हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

ना रुकेगा। हमारी समाज को रोकने के लिए कांटों की बाड़े खड़ी की जाए, जुल्म की दीवारें खड़ी की जाए। हम इन्हें तानते हुए मंजिले मकसूद

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज़ भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular मिट्टी जो माँ
7: सब्सिडी हासिल करने लाये रजिस्ट्रेशन की शुरुआत थी वही वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त तेल जी क़ीमतुनि में वास अवाम ते पवंदड़ बार जो हुकूमत खे अहसास आहे ॾुखे वक़्त में अवाम खे अकेलो न छॾींदासीं। हुकूमत पेट्रोल रिलीफ हासिल करण जो तरीक़ो ॿुधाए छॾियो। मोबाइल मैसेज ते REG लिखो, पोइ क़ौमी सुञाणप कार्ड नंबर, मोटरसाइकिल, नंढी गाॾी या रक्षा जो रजिस्ट्रेशन नंबर, सूबे जो पहिरियों लफ़्ज़ ऐं गाॾी जी रजिस्ट्रेशन जी तारीख़ लिखी 9771 ते सेंड कयो। तस्दीकी मैसेज अचण बाद पेट्रोल पंप वञण खां पहिरें TOK लिखी वरी 9771 ते सेंड कयो ऐं टोकन हासिल कयो। पंप ते टोकन ॾेखारे सब्सिडी हासिल करे सघिजे थी। आमना और मुज़्माहिदे बाबति ॻाल्हियुनि लाइ ईरान ऐं ओमान में अॼु थियल इजलास मुल्तवी। ओमान ऐं ईरान जे हुकूमत जे उहिदेदारनि तस्दीक करे छॾी। ईरान जे परे वज़ारत जे उहिदेदार जो चवणु आहे त ख़िते जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जी सूरतहाल ते तेहरान ऐं मुस्तक जे गॾियल मुशावरत सां इजलास मुल्तवी कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान में फोन ते राब्तो। सऊदी अरब ते हूसी बागियुनि जे ताज़नि हमलनि जी मज़म्मत। वज़ीर आज़म पारां सऊदी अरब सां मुकमल बदी जे अज़म जो इज़हार। मौजूदा हालतुनि में दानिशमदारनि फ़ैसलनि ते सऊदी वलीअहद खे ख़राज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त हूसी बागियुनि जूं कार्रवायूं ख़िते जे अमून ऐं सलामती लाइ ख़तरो आहिनि।

वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद सिक्योरिटी लाइ सूबनि खां मदद घुरी वरिती। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न पंजाब सिंध ऐं बलोचिस्तान हुकूमतुनि खे ख़त लिखी छॾियो। 23,500 पुलिस अहलकार तलब पंजाब मां, 15,000 सिंध मां, 8,000 ऐं बलोचिस्तान मां 500 पुलिस अहलकार 20 सेप्टेम्बर ताईं इस्लामाबाद पहुचाइण ते इजाज़त। पंजाब में दहशतगर्दी जो खतरो कलम 144 लागू। पंजाब जे घरू खाते पारां नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मुताबिक सॼे सूबे में 13 खां 17 सेप्टेम्बर ताईं कलम 144 लागू हूंदो। अवामी हंधनि, रस्तनि, शाहरान ऐं खुलियल जायुनि ते 5 या उन खां वधीक माण्हुनि जे इजतमा, रैली, जलसनि ऐं मुज़ाहिरनि ते पाबंदी हूंदी। कानून लागू कंदड़ ऐं इंटेलिजेंस इदारनि तरफ़ां दहशतगर्दी जे इम्कानी खतरनि जूं रिपोर्टूं मिलण सबबि कलम 144 लागू कयो वियो आहे। घर वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो राति देर सां कराची जे मुख़्तलिफ़ थाणनि जो दौरो। केतिरा ई पुलिस अहलकार ड्यूटी तां गायब। हेड मुरर ऐं ड्यूटी आफ़िसर मुअतल। घर वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुलिस्तान ऐं जौहर, यूसुफ प्लाज़ा, जौहर आबाद ऐं सचल थाणनि जो दौरो कयो। हाज़िर ऐं रोज़नामो कयो। लाकअप में मौजूद आबदारनि खां तफ़सील वरिता। मुख़्तलिफ़ मामलनि जो जाइज़ो। सचल थाणे जो केतिरा ई अहलकार ड्यूटी तां गायब। हेड मुरर सुराब ॻोठ ऐं ड्यूटी आफ़िसर सुराब ॻोठ मुअतल। घर वज़ीर ज़ियाल अंजार जो चवण हो त कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। फर्ज़ में लापरवाही कंदड़ अलकान खे घरू भेड़ो कयो वेंदो। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ लाड़काड़े में अवामी वर्कर्स पार्टी मार्कस जे सिंध बचायो मार्च ते पुलिस कड़की पई। औरत कारकुन समेत केतिरा ई कारकुन गिरफ़्तार। पुलिस कामरेड बख्शल थल्लो, कामरेड सिंगा नूनारी, कामरेड यूनिस राहू, कामरेड फेस कीरियो समेत केतिरनि अॻुवाणे कारकुन खे गिरफ़्तार करे लाकअप करे छॾियो। कामरेड फौजिया सिंगार खे बज़ोरी खंभे पुलिस मोबाइल में विहारियो वियो। मज़ामत ते खे सॼो वियो। अॻुवाणनि जो चवण हो त सिंध जी वादानियत जे हवाले सां रिचल मार्च ते पुलिस गर्दी कई वई। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। अवामी तहरीक पारां सिंध जे विरहाङे ज़मीनुनि ऐं मदनी वसीलनि ते कब्ज़नि, केनालनि ऐं डेमुनि जे अॾावत ख़िलाफ़ अवामी सुजाॻी मुहिम तेज़ करण जो फ़ैसिलो। हैदराबाद में पार्टी जे मर्कज़ी कमेटी जो इजलास। लाड़काणे में अवामी वर्कर्स पार्टी मार्कस कबाणनि ऐं कारकुननि जी गिरफ़्तारी जी मज़म्मत। बख्शत थल्ले समेत कारकुननि जी आज़ादी जो मुतालबो। वसंत थरी ऐं ॿियनि अॻवाणनि चयो त सिंध सदियुनि जी तारीख़ी वतन आहे। सिंध हिकु आहे, हिकु ई रहंदी। उन मामले ते कंहिं बि असेंबली खे बहस जो अख़्तियार न आहे। सिंध जे वजूद वसीले ने सिंधु दरिया खे खतरा आहिनि। सिंधी क़ौम खे हिकु ई भरपूर जिदोजहद करणी पवंदी। वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल जो जमायत इस्लामी जे नाइब अमीर लियाकत बलोच सां राब्तो। हुकूमत ॻाल्हियुनि जे टे दौर लाइ वधीक हिकु ॾींहं जी मोहलत घुरी वरिती। जमायत इस्लामी हुकूमत जे विच में पेट्रोलियम लेवी ते ॻाल्हियुनि जो टियों दौर अॼु थियणो हो। जमायत इस्लामी जे नाइब अमीर लियाकत बलोच जो चवण आहे त हसन इक़बाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पैगाम पहुचायो। वज़ीर आज़म चाहे थो त पेट्रोलियम लेवी ते ॻाल्हियूं सुभाणे थियनि। पेट्रोलियम लेवी ते हुकूमत सां ॻाल्हियूं अंगारे ऐं आईपीपीएस बाबति अरबा ते थींदियूं। बाकराणे वेझो मुबैना तौर कार इल्ज़ाम हेठि बीठो कतुल। बकापुर थाणे जी हद घोट समय उनड़ 12 जाबदार मीर हसन उनड़ पंहिंजे ज़ाल वी वीरन जी नुसरत उर्फ गुजर ख़ातून ऐं घोठ वासी नौजवान लखमीर उनड़ खे गोलियूं हणी कतुल करे छॾियो। लाश अस्पताल मुंतकिल। मक़तूल नौजवाननि जे वारसनि जो चवण आहे त ज़ालिमनि ज़ुल्म कयो आहे, असांजे नौजवान खे बेगुनाह क़तुल कयो वियो आहे। ऐं भारत हिकु भेरो ॿीहर क्रिकेट खे सियासत ऐं नफ़रत जे वर चाढ़े छॾियो। एशिया टी ट्वेंटी कप जे फातह भारतीय वुमेन टीम जो मोहसिन नक़वी खां ट्रॉफी वठण खां इनकार। एशिया कप जे फाइनल में भारतीय वुमेन टीम श्रीलंका खे 72 रन्स तां शिकस्त ॾिनी। भारत जी टीम पहिरें खेॾंदे 183 रन्स ठाहियूं। समृति मंदाना 59, शफाली वर्मा 88 रन्स जी अंग खेॾी नुमाया रहियूं। दिफ़ाई चैंपियन श्रीलंका जी टीम 111 रन्स ते ढेर मान हो। क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि मुताबिक़ एशियन क्रिकेट काउंसिल जो सदर कामयाब टीम खे ट्रॉफी ॾींदो आहे। भारतीय वुमेन टीम मोहसिन

0: नकवी का ट्रॉफी वठण का इनकार कर छो। मैन्स एशिया कप जे ट्रॉफी भारत पारा न वठण सबब आईसीसी जे ऑफिस में पियल आए।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद।

जी समीन कहिड़ा रहनि जा खुश आहियो ठीक आहियो चाक चंग भला असांजी हर पल हमेशा अवां प्यारनि सॼणनि लाइ इहा ई दुआ हूंदी आहे त जिते बि जो खुश हुजो कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्कराईंदा रहो आमीन। साईं जा मूंखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु सूमर जो ॾींहुं सेप्टेम्बर महीने जी 14 तारीख़ 2026 ईस्वी सन ऐं रबसानी महीने जी अॼु ख़ैर सां पहिरीं तारीख़ आहे 1448 हिजरी सन। समझा ही जहान उमीदनि ते क़ाइमु आहे। असां मां हर कोई कंहिं न कंहिं हवाले सां कंहिं न कंहिं मां उमीदूं जोड़ियूं वेठो आहे। हूअं बि साईं मुंहिंजा सण चयो आहे त उमेद जो पलउ कॾहिं बि न छॾिजे छो त उहा उमेद ई त आहे जेका इंसान खे जीअण जो दगु ॾींदी आहे। जेको बि माण्हू उमेद जे सहारे जिदोजहद करे थो सो ई फल हासिल करे थो। बहरहाल ही समूरी हयाती पल पल उमेद जी घड़ीअ सां टिक टिक करे अॻिते वधंदी रहे थी।

समझा चयो वञे थो त कोरीअड़ो शिकार जो त शौक़ीन हूंदो आहे पर इंसान जे खुराक जो मुहाफ़िज़ हूंदो आहे, हिफ़ाज़त कंदो आहे। जेकॾहिं तव्हां समुझो था त स्पाइडरमैन फिल्म में मर्कज़ी किरदार जी ताक़त सिर्फ़ अफ़सानवी आहे, त अव्हां खे इहो बि ॼाणणु घुर्जे त कोरीअड़ो शिकार जो शौक़ीन त आहे पर इंसान जे खुराक जो मुहाफ़िज़ बि आहे। साइंसी खोजना मुजिबि कोरीअड़नि खे आम तौर जेतिरी खुराक इस्तेमाल करणी हूंदी आहे त उन खां 50% वधीक खे मारींदा आहिनि, पंहिंजो शिकार कंदा आहिनि ऐं उहो सिर्फ़ लुत्फ़ अंदोज़ थियण लाइ कंदा आहिनि। कोरीअड़े जो हिकु क़िस्म ॼार ठाहे शिकार कंदो आहे। शाम जे वक़्तु कोरीअड़ो पंहिंजो ॼार ठाहींदो आहे ऐं राति जे वक़्तु जीत उॾामंदा आहिनि त उन खे ॼार नज़र न ईंदो ऐं जीत उन ॼार में फासी पवंदा आहिनि। कोरीअड़ो पंहिंजे शिकार खे खाईंदो न आहे पर उहो पंहिंजो ज़हर जीत जे जिस्म में दाख़िल कंदो आहे, जंहिं खां पोइ उन जे जिस्म जा समूरा टिश्यूस मादे में तब्दील थी वेंदा आहिनि ऐं उन खे कोरीअड़ो चूसींदो आहे। कोरीअड़ो पंहिंजे ॼार जो नमूनो बनीअ में मौजूद शिकार जे तादाद ऐं उन जे जिस्मानी बीहक मूजिब ठाहींदो आहे। कोरीअड़ो गोश्त खोर आहे ऐं इहो फसल खे बिल्कुल नुक़सान नाहे पहुचाईंदो। जॾहिं त शिकार न थिए त कोरीअड़ में इहा सलाह अलाह साईं बिल्कुल रखी आहे त खाधे पीते बिना बि कोरीअड़ो केतिरा ई महीना जीअरो रही सघे थो। त साईं जा इहा मालूमात अवां ताईं कोरीअड़ जे बनस्पत जेको पंहिंजो त खुराक खाए थो ठाहे थो पर जेको फसल आहे इंसान जे फ़ाइदे लाइ उन जी जेको आहे हिफ़ाज़त कंदो आहे।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दिहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन. GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.
4: Yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जी हा समिन, प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां खे भलीकार चऊं था। ऐं असांजो प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, मेहरापुर, मटियारी, सकरण ऐं मातली स्टेशन तां। चवंदा आहिनि त माउ जो खीर पीअंदड़ ॿारनि में ब्लड प्रेशर जो दबाव घटि थिए थो ऐं उन ते मुसबित असर पवनि था। ऐं माउ जो खीर पीअंदड़ ॿारनि लाइ हिकु बहितरीन वर्ज़िश बि आहे। ऐं ॿार जेतिरो माउ जो खीर वधीक वक़्तु पीअंदो, ओतिरो उन्हनि जी सिहत ते तमामु सुठा असर पवंदा। ऐं ही नतीजा चवनि था त 2000 ॿारनि ते कयल तहक़ीक़ बाद साम्हूं आंदा विया। उन्हनि ॿारनि जो तालुक़ ॿाहिरियनि मुल्कनि सां हुयो। हिन ॻाल्हि जो पतो लॻायो वियो आहे त खीर पीअंदड़ ॿारनि ते जाग्राफ़ी हालतूं बि असर अंदाज़ थियनि थियूं या न। उन जो नतीजो कढियो वियो त जाग्राफ़ी हालतूं ॿारनि जी तब्दीली ते असर अंदाज़ नथियूं थियनि। बहरहाल हीअ ॻाल्हि साम्हूं आई आहे त जेको ॿार माउ जो खीर यानी अमड़ जी थञ वधीक अरसो पीअनि था, उन्हनि जी रत जो दबाव घटि रहे थो ऐं उहे अक्सर बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रहनि था ऐं काफ़ी बीमारियुनि खां पाण बचनि था। ऐं हुननि जो थोरो थुलाइप सां बि तालुक ॾेखारियो वियो आहे, यानी अमड़ जो खीर एतिरो ताक़तवर आहे, एतिरो सिहतमंद आहे। छो त जेकॾहिं ॿार अॼुकल्ह फीडर सां खीर पी थो त फीडर में जरासीम थी सघे थो, उहो थोरो खुलियल बि आहे ऐं उन खे वॉश बि कयो वेंदो आहे, उन खे साफ़ बि कयो वेंदो आहे। काफ़ी मरहला उन जे वॉश थियण जा हूंदा आहिनि, पर अमर जो खीर अहिड़ी शइ आहे जेको बिना कंहिं फीडर जे, बिना कंहिं सफ़ाई जे बिल्कुलु डायरेक्ट उहो ॿाड़ो पी सघे थो, त काफ़ी बीमारियुनि खां बची। ऐं अमर जो खीर ॾसियो वियो आहे पंहिंजे टाइमली जेको ॾसियो वियो आहे ऐं पंहिंजो अरसो जेको शरीयतनि मुताबिक़ ॾसियो वियो आहे, जेकॾहिं उहो ॿार 2 साल 2.5 साल खीर पीए थो त उहो सिहतमंद हूंदो आहे, काफ़ी बीमारियुनि खां बची सघे थो। छो त अमड़ त अमड़ आहे न, उन जो खीर बि अलाए छा आहे।

जी हाँ, समय प्रोग्राम रोशन सुबह में वहां के इंतजार हों दो, वहां के ओसेड़ो हों दो सवाल जो त असांजो अॼु जेको सवाल आहे उहो हिकड़ो मुनफ़रिद सवाल आहे ऐं उन सां लाॻापियल जेकी अमां लाइ ख़ुशी आहे उहा तमामु बहितरीन हूंदी। असांजो जेको सवाल जो अॼु सही जवाब ॾींदो त असां उन जे पसंदि जो कलाम बि हलाईंदासीं ऐं असां उन जे पसंदि ते थोरो मुख़्तसिर इफ़्तारु बि कराईंदासीं। पर सवाल जेको पहिरियों ॿुधाईंदो, असांजो अॼु सवाल आहे त पेट्रोल जो अॼु केतिरो अघु आहे। पेट्रोल जा अघ रोज़ नवां मटिजनि पिया, पेट्रोल अघु रोज़ नओं चेंज थिए पियो। तव्हांखे असांखे अॼोको अघु ॿुधाइणो आहे त पेट्रोल जो अॼु अघु कहिड़ो आहे। उन में अव्हांखे सवल ॿुधाइणा आहिनि, अव्हां खे रुपया बि ॿुधाइणा आहिनि, अव्हां खे पैसा ॿुधाइणा आहिनि। जेको बिल्कुलु परफेक्ट सही जवाब ॾींदो ऐं पहिरियों सही जवाब ॾींदो त उन जे असां पसंदि जो कलाम बि हलाईंदासीं, असां उन जो मुख़्तसिर तारुफ़ बि कराईंदासीं। ऐं साईं जा अव्हां असां ॾे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था, जेके असांजा दोस्त प्रोग्राम में हाणे आन थिया आहिनि या जेके असांजे रेडियो पहिरियों दफ़ो ॿुधनि था, त असां उन खे तरीक़ेकार ॿुधाईंदा हलूं। तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल कीअं थी सघो था? असांजे प्रोग्राम में शामिल अव्हां खे थियण लाइ तमामु आसान तरीक़ो ॿुधाईंदासीं। SMS जो आसान तरीक़ो आहे, तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी यानी लाड़काना LRK लिखी स्पेस ॾींदो, उन बाद तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाब लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 888 ते, यानी 888 ते तव्हां सेंड कंदव। ऐं जेकॾहिं असांजा दोस्त Facebook ते प्रोग्राम ॿुधनि पिया त असांजी ID आहे GFM88, असांजी प्रोग्राम जी ID आहे, Facebook जो असांजो पेज आहे, तव्हां उन ते बि असांखे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजो मोबाइल आन आहे, असांजी स्टूडियो में 10 बजे आन थींदी, तव्हां मोबाइल ते बि असांजे नंबर ते बि कॉल करे पंहिंजे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। जी हा, नंबर तमामु आसान आहे 0332132288। असांजे प्रोग्राम जे में अॼु जो सवाल आहे त पेट्रोल जो अघु केतिरो आहे। जी हा, समुझा तव्हां खे सवल ॿुधाइणा आहिनि, अव्हां खे रुपया ऐं पैसा ॿुधाइणा आहिनि ऐं कोशिश कयो ड्रोड़ो ड्रुको वञो पेट्रोल पंप ते ऐं उन जो रेट अघु ॾिसी जो केतिरो आहे।

ऐं साईं मुंहिंजा चयो वञे थो त वाकई दिलि बि टुटंदी आहे। चयो वञे थो त जेकॾहिं ओचितो डुख वारी ख़बर ॿुधण सां दिलि वाकई टुटी सघे थी, ऐं जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे ओचितो डुख भरी ख़बर ॿुधाई वञे त उन जे दबाव सबबि दिलि खे झटको लॻी सघे थो ऐं दिलि दर्द विचां टुटी बि सघे थी। पर हीअ सुठी ॻाल्हि बि ॿुधाई वई आहे त उहे टुटल दिलियूं वरी जुड़ी बि सघनि थियूं। ऐं साईं जा चवनि था त कुझु हफ़्तनि में दिलि सही थी वेंदी, ऐं खोजना मुताबिक़ अहिड़नि 19 मरीज़नि खे शामिल कयो वियो जेकी दिलि जी तकलीफ़ में मुब्तला हुआ ऐं सीने जे सूर में साह जे रुकजी वञण बीमारी में आरज़ी शिकायत जी दाह खणी इस्पताल आया हुआ। अहिड़नि मरीज़नि में वधि तादादु पोढ़ियुनि औरतुनि जो हुयो। माहिर चवनि था त अहिड़नि मरीज़नि जी रत में स्ट्रेस हार्मोन जो मिक़दार वधी वञे थो जेकी दिलि जे लाइ नुक़सानकार आहे। अहिड़नि मरीज़नि खे दिलि जी तकलीफ़ खां अॻु जज़्बाती ॻाल्हि जे करे धचको लॻो हुयो त साईं जा कोशिश कयूं त असां अहिड़ी ॻाल्हि न कयूं अहिड़े कंहिं दिलि जे कमज़ोर माण्हू सां जो हुन जी दिलि टुटी पए। ऐं चवंदा आहिनि त जेका अचानक ख़बर मिलंदी आहे या अचानक दिलि टुटंदी आहे उहा ठीक बि थी वेंदी आहे, पर मास्टर मंज़ूर खे ॿुधूं पिया त दिलि जी कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular, Mitiya Jo Ma.
7: रुपया रिलीफ मिलंदो सब्सिडी हासिल करण लाइ रजिस्ट्रेशन जी शुरुआत थी वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त तेल जी क़ीमतनि में वाध सबब अवाम ते पवंदड़ बार जो हुकूमत खे अहसास आहे। डुखे वक़्त में अवाम खे अकेलो न छॾींदासीं। हुकूमत पेट्रोल रिलीफ हासिल करण जो तरीक़ो मैसेज ते REG लिखो, पोए कौमी सुञाणप कार्ड नंबर, मोटरसाइकिल, नंढी गाड़ी या रक्षा जो रजिस्ट्रेशन नंबर, सूबे जो पहिरियों लफ़्ज़ ऐं गाड़ी जी रजिस्ट्रेशन जी तारीख़ लिखी 97-71 ते सेंड कयो। तस्दीकी मैसेज अचण बाद पेट्रोल पंप वञण खां पहिरीं TOK लिखी वरी 97-71 ते सेंड कयो ऐं टोकन हासिल कयो। पंप ते टोकन ॾेखारे सब्सिडी हासिल करे सघिजे थो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी समझा प्रोग्राम रोशन सुबह में असो सवाल नो आए ता पेट्रोल जो सरकारी अग फी लीटर केतरो आए जेको पहरे नंबर ते पंजो सवाल जवाब दींदो उन जो पसंद जो कलाम भी सा हलाईंदासीं उन जो मुख़्तसर तारुफ़ भी सा प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ऐं जेकॾहिं बाक़ी दोस्त सवाल जो सही जवाब ॾींदा त उन जा फॉर्मेलिटी तौर बिल्कुलु नाला सां ज़रूर खणंदासीं पर जेको पहिरें नंबर ते सवाल जो जंहिंजो सही जवाब हूंदो पहिरें नंबर ते जंहिं कॉल कई हूंदी उन जो तारुफ़ बि मुख़्तसर हलाईंदासीं उन जे पसंद जो कलाम बि हलाईंदासीं अव्हां खे ॿुधाइणो आहे त पेट्रोल जो सरकारी अघु फी लीटर केतिरो आहे साईं मुंहिंजा उमिरि जे वधण ते घणो कुझु हिकु ई वक़्तु ऐं असां पंहिंजी खोराक ते वधण वक़्तु काबू रखंदा आहियूं ऐं मुतहरक रहण जी कोशिश कंदा आहियूं पर जॾहिं असां उमिरि जी हिकु ख़ासि सतह ते पहुची वञूं था त पंहिंजो वज़न काबू करणु ॾुखियो थी वेंदो आहे ऐं ताज़ो नई तहक़ीक़ यानी रिसर्च सबबि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा केतिरा ई किलो वज़न वधण जो सबबि ॼाणण में मदद मिली आहे ऐं ॿाहिरनि मुल्कनि जे तहक़ीक़ाती इदारनि जो ख़्यालु आहे त उन जो जिस्मानी चर्बी में तब्दील जे अमल सां को वास्तो न हुजणु घुर्जे चर्बी ॻारण जो अमल इंसानी जिस्म जी उहा सलाहियत जंहिंखे चर्बीअ जो ज़खीरो चई सघे थो ऐं ज़रूरत मुजिबि उन खे ॻारे सघे थो साईं मुंहिंजा असांजे जिस्म में जेका वाद आहे जेको वज़न आहे उन में ख़ासि करे चर्बीअ जो वधी वञणु आहे असां पंहिंजी खोराक ते कंट्रोल कंदासीं असां पंहिंजे खाइण पीअण ते कंट्रोल कंदासीं त असांजो कोलेस्ट्रोल न वधंदो असांजी चर्बी न वधंदी ऐं चर्बी वधण सां असांजे जिस्म में काफ़ी बीमारियूं जनम वठंदियूं उहो तमामु घणो नुक़सान आहे जेतिरो थी सघे त असां कोशिश करे पंहिंजा खाधा जेके आहिनि सब्जियूं इस्तेमालु कयूं ऐं खाधा अहिड़ा खाऊं जेके नुक़सानकार न हुजनि।

0: आई निखरी आई चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस की प्रमोशन जॉब वैकेंसीज पब्लिक अनाउंसमेंट्स इवेंट्स सेमिनार्स स्पेशल ऑफर्स स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
0: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में डार्क स्पॉट्स एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ऐं दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ऐं निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
2: सखर और गिरदोनवा की गरीब आवाम के लिए खुशखबरी आंखों का मुफ्त इलाज उनकी दहलीज पर मुर्शिद सगोरा बाबा शेख भजन साहब की 92वीं सालगिरह की खुशी में आंखों का मुफ्त कैंप जहां मिले तमाम मरीजों को मुफ्त चेकअप मुफ्त ट्रीटमेंट मुफ्त दवाएं मुफ्त ऑपरेशन मुफ्त ऐनकें सब कुछ मुफ्त बस खिदमत का मौका दें। याद रहे 16 सितंबर बरोज बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आके मशहूर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी

यार मछा क्या किथे वन्या घर में वेठो है हाँ पर ठीक ही

0: में न थो थे, पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था, ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी, कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
1: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
0: हिकु? इहो कीअं?
1: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
0: त पोइ मां छा कयां?
1: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। ही कुदरती जुज़न मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
0: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
1: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
2: मौसर होम्योपैथिक इलाज अब सखर शहर में डॉक्टर आजम अली मुगल के साथ। मेदे की खराबी, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी उबारी बवासीर, अरकन नसा, घुटनों, जोड़ों और कमर दर्द, गुर्दों की पथरी समेत मौत अमराज के लिए मुस्तनद होम्योपैथी मुआयना, मुकम्मल रहनुमाई और बीमारी की नौयत के मुताबिक इलाज। टाइमिंग रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जुम्मा तातील। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप के बराबर में, रेस कोर्स रोड सखर। राबता 03112082600 एंड 03333-714-3311। डॉक्टर आजम अली मुगल।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: अच्छन वारन का परेशान आयो, पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर। पंहिंजे पसंदीदा रंग ताज बणायो, वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो। आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद।
6: इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती।
7: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
8: कंट्रोल फ्रेम 210-210 मूव करेंगे।
6: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का, जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे। सिंध
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
9: छा तव्हां जो ख़्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण? त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप मौजूद। 2 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री, जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हां खे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा।
10: लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पैंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अजी दाखला वठो। एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस ओटी हेल्थ टेक्नीशियन ए बिया सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन। एड्रेस

0: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 07115635642 आई 03108166111। खुशखबरी हॾनि जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुबतला कंधरा ऐं पसगिरदाईअ में रहण वारनि शहरनि जे लाइ खु़शख़बरी हिकु रोज़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप जंहिं में जिना हस्पताल कराचीअ जो मशहूरु मारूफ़ हॾनि जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद उमर मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कंदो। तारीख़ 19 सेप्टेम्बर छंछर जे ॾींहुं सुबुह 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं। हॾनि जी बीमारियुनि में मुबतला मरीज़ हॾनि ऐं जोड़नि जे सूर चेल ऐं कुनर जो सूर हॾनि जी टीबी ऐं कैंसर ॿारनि में हॾनि जा मसाला शुगर जे मरीज़नि में ज़ख़्म जो न भरजण ऐं हॾनि में मुबतला मरीज़नि जो स्पेशल चेकअप कयो वेंदो त देर साजी हिन मुफ़्त मेडिकल कैंप मां फ़ाइदो हासिल करियो। एड्रेस डॉक्टर भागचंद शिफा डी केयर क्लिनिक मेन रोड कंधरा राबतो 03-7331-7326।
1: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03009312700।
0: 44 सालनि जो तजुर्बो हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पर

जी सेम जा प्रोग्राम रोशन सुबुह में हाणे अव्हां खे सवाल जो सही जवाब ॿुधाईंदासीं ऐं उन्हनि दोस्तनि जा नाला बि ॿुधाईंदासीं जिन सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे ऐं जंहिं सवाल जो सही जवाब पहिरें नंबर ते ॾिनो आहे असां उन जो नालो आख़िर में खणंदासीं छो त हुन जो तारीफ़ बि आहे ऐं हुन जो पसंदि जो कलाम बि आहे त असांजो जेको पेट्रोल जो सरकारी अघु आहे अॼोको उहो आहे 375 रुपया 82 पैसा जी हा साईं मुंहिंजा छो त हर पंप ते पंहिंजो पंहिंजो रुपए ॿिन जो फ़र्क़ु हूंदो आहे ऐं हर कंहिंजो अघु पंहिंजो आहे पर जेके वीचारा गुगियुनि वारा आहिनि रोडनि ते दुकाननि ते गुगियूं रखियूं वेठा आहिनि उन जो त अघु ई सफ़ा निरालो आहे पर सरकारी जेको अघु आहे पेट्रोल पंपनि ते मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे जेको सरकारी गवर्नमेंट जो अघु आहे उहो आहे 375 रुपया 82 पैसा इहो असांजे सवाल जो सही जवाब ऐं दोस्त पंहिंजे थोरो दिलि खे क़ाबू कनि छो त धचके में दिलि टुटी पवंदी आहे अहिड़ी का ख़बर हूंदी आहे पर असांजो सवाल जो जेको सही जवाब दोस्त पहिरें नंबर ते ॿुधायो आहे असां उन जो नालो आख़िर में खणंदासीं त असांजो सही जवाब ॾियण वारा दोस्त आहिनि अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां साबिर खोसो सैयद महला लाड़ेकाणे खां मोहम्मद शरीफ़ दरेजी बलोचिस्तान खां कुर्बान ख़ासकेली इनायत ख़ासकेली झंडे मरी खां इक़बाल लाचारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां मुरीद सोलंगी सखर खां ऐं महरम गोराहो नट गोराहो नौशहरो फिरोज़ खां चनेसर भेण मोरे खां फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठ आगा खन जतोई खां गुलाब खान कुंभर ॻोठ कंगन खां त साईं मुंहिंजा असां हिन वक़्ति कलाम बि हलाईंदासीं दोस्त जो ऐं हुन जो तारीफ़ आहे दोस्त आहे एहसान अली बुगटी जी हा साईं मुंहिंजा तमामु बहितरीन ऐं सुठे अंदाज़ में सवाल जो सही जवाब ॾिनो ऐं सभिनी खां पहिरियां दोस्त जवाब ॾिनो दोस्त आहे एहसान अली बुगटी उन जे वालसब नालो आहे हसन अली बुगटी उन ॻोठ आहे रोअल खान बुगटी तालुको ऐं ज़िलो लाड़काणो दोस्त पापुलेशन में सरकारी मुलाज़िम आहे ऐं दोस्त इहो मुख़्तसिर तारीफ़ आहे ऐं नूर बानो जी आवाज़ में हिन जी पसंदि जो कलाम आहे दोस्त जी वॾी महिरबानी हुन खे असां मुबारक ॾियूं पिया ऐं ख़ुशि नसीब थो त दोस्त आहे असांजे अॼोके प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं दोस्त जे पसंदि जो कलाम नूर बानो जी आवाज़ में

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो माँ
5: एक औरत है नींगर समेत बिन जणन के अगवा करे गुम कयो वयो आहे केस दाखिल कराण लाइ असां बकापुर थाणे ते वियासीं पर एसएचओ जो इनकार करे छॾियो पुलिस कातिलन जे वंगारो आहे ऐं केस दाखिल करण खां तयार नाहे आईजी सियाणो कतल केस दाखिल कराए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कराइनि
6: खैरपुर भरिसां शादी तकरीब में फायरिंग निंगर मारिजी वियो हिकु ज़ख़्मी ॻोठु सईद खान लाखो भरिसां शादीअ दौरान ख़ुशीअ में फायरिंग निंगर अली ज़मान धारे जो मारिजी वियो गोली लॻण करे ॾहनि वारनि जो साईंदा धारे जो ज़ख़्मी थी पियो शादीअ जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील
5: ऐं बदीन भरिसां ॼातल शख़्स जो बोरीबंद लाश हथायो आहे मीरवा भरिसां बोरीअ में लाश ॾिसी इलाइक़े वासियुनि पुलिस खे इतलाह ॾिनो पुलिस वाके वारी

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, तो जीए एफएम 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लोन का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो बुधंदा रहो। अभी बुधो प्या जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: टे दहशतगर्द मारिजी विया। पछीन में सीटीडी जी कार्रवाई के नतीजे में छह शकी दहशतगर्द मारिजी विया। सीटीडी तर्जमान मूजिब ऑपरेशन दौरान चार अहलकार भी जख्मी थिया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालुक पाबंदी मडल तंज़ीम सां आहे।
1: पाकिस्तान विचोभर में चिकताण घटाइण लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे। गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो आहे त मके मुआहिदे में पाकिस्तान वधीक ज़िमेवार तस्लीम कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई वञे। ईरान अमेरिका चिकताण घटाइण में बि पाकिस्तान सभिनी खां अॻु भरियो आहे।
0: आबनाय उर्म्स बाबति विचोभर जे मुल्कनि ऐं ईरान जो अॼोको रिथियल इजलास मुल्तवी। ईरान इख़्तियारनि मूजिब इजलास तहरान ऐं मस्कत जे गडि॒यल फ़ैसिले तहत ख़िते जे मुल्कनि जे दरख़्वास्त ते मुल्तवी कयो वियो। अमरीकी

0: एसएसपी चौक ते जांच कयो। वास गुलजार हबीब राहिब ऐं अरशद
1: नकीब समेत टे दहशतगर्द मारिजी विया। पश्चिम में सीटीडी जी कार्रवाई जे नतीजे में छह शकी दहशतगर्द मारिजी विया। सीटीडी तर्जमान मूजिब ऑपरेशन दौरान चार अहलकार बि ज़ख्मी थिया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालुक पाबंदी मड़ियल तंज़ीम सां आहे।
0: पाकुड़ में छिकताण घर अदा करे रहियो आहे। गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो आहे त मके मुआहिदे में पाकिस्तान वधीक ज़िम्मेवारु कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई वञे। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में बि पाकिस्तान सभिनी खां अॻु भरो आहे।
1: आबनाय उर्म्स बाबति विच ओभर जे मुल्कनि ऐं ईरान जो अॼोको रिथियल इजलास मुल्तवी। ईरान इख़्तियारनि मूजिब इजलास तहरान ऐं मस्कत जे गडि॒यल फ़ैसिले तहत खिते जे मुल्कनि जे दरख़्वास्त ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त नार वारा मुल्क ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं करे सघनि था, असांखे को एतिराज़ न आहे।

0: बाकरानी वेझो जोड़े के कतल खिलाफ वारसन जो लाड़काने में एसएसपी चौक ते लाश रखी धरणो घोट समाय उनड़ में कतल थे मुसरत ए लखमीर उनड़ के वारसन लाश रखी एहतजाज कयो वारसन जो चवण है त गुजरियल ढीह जवाबदार गुलजार हबीब राहिब ए अरशद उनड़ ए बेन मुसरत ए लखमीर उनड़ के कतल कयो एक औरत ए नीगर समेत बिन जणन के अगवा करे गुम कयो वयो है जवाबदार के गिरफ्तार कयो वञे।
1: इस यौम आजादी अहद करते हैं लड़कियों की 100%।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।
2: One peak to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: प्राण चार अलकार भी जख्मी थे मार जी वेल दहशतगर्द जो तालक पाबंदी मरल तंजीम से आए।
8: पाकिस्तान विच ओभर में छिकताण घटाइण लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे। घरेल कौमनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदी आसिम इफ्तिखार चयो आहे त मके मुआदे में पाकिस्तान वधीक ज़िमेवारियूं खणी रहियो आहे। तस्लीम कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई वञे। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में बि पाकिस्तान सभिनी खां अगभरो आहे।
7: आबनाम बाबत विच ओभर के मुल्क ए ईरान जो अजोको रिथियल इजलास मुलतवी। ईरानी इख्तियार मूजिब इजलास तहरान ए मस्कत में गडियल फैसले तहत खिते के मुल्क के दरख्वास्त मुलतवी कई वो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है नार वारा मुल्क ईरानी इख्तियार मुलाकात कर कोई इतराज ना।
8: खिपरो वेझो अगोणो सूबाई वजीर ए जिमीदार हसन अली चाहियो मुबैना तौर अगवा बिन गाड़ियों में सवार हथियार बंद बंगले ते कहा करे तशद्दुद बाद जमींदार हसन अली के अगवा करे वया। वाके की इतला ते बिरादरी जा मानू ए शहरी गड थी वया। अगोणे सूबाई वजीर हसन अली के कें अगवा कयो पुलिस दे खबर।
7: मेयर वेझो जमीनी तकरार तां जेड़ो नौजवान कतल कचे तरफ वेंदड़ गोठ जाम खान भुट वासी जफर भुट के पतण ते गोलियों हणी कतल कयो वियो। वारसा जो चवण है जेड़े से को भी वास्तो ना नौजवान के बेगुनाह कतल कई वो है। जरिए जो चवण है जमीन के मालिकियत आलमानी जतोई धुरन में हलंदड़ तकरार है।
8: खैरपुर भरसा शादी की तकरीब में फायरिंग नींगर मार एक जख्मी गोठ सईद लाखो भरसा शादी दौरान खुशी में कल फायरिंग नींगर अली जमान दारेजो का हयाती फसे वरती। गोली रखण कर दह वरियन जो साईदा दारेजो जख्मी थो। शादी जो खुशियों मातम में तब्दील थी वही।
7: बदीन भरसाण जातल शख्स जो बोरी बंद।

0: एक और सॉफ्टवेयर के जरिए निशानों बनाए
1: हर किस्म आसान।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय तंदले तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दुआओं के संबंध है साधु की बारिश और आसवर खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागते जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक सांस से तर्दकम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ है डी स्किन ब्यूटी, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के मुताबिक है तो आप इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा बातें जान सकते हैं ताकि आप लोग आराम से तसल्ली से और दिल खोल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सके। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यस आप सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी समाते हैं जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है उन तमाम लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, इसका फार्मूला ऐसा रखा गया है कि हर कोई इंसान आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। ओके जी, यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं टू लिसनर्स फॉर रीजन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल जनाब, सो आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम करने के साथ साथ बिल्कुल जी सर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे 3 बजे तक। बिल्कुल जी, 2 घंटे हमारे पास मौजूद है और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्नी शाली बातें और इन्नी शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र भी होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि जनाब शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसे बहुत सारी अंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की समाल आने का काम करती भाई जान ये सिद्रा, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते और यहाँ पर ऐसा ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। और आगे से प्रोग्राम जो करेंगे तो जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास एक कलाम मौजूद है प्लस नाद, तो हम जरा प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ, उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए और हसीन होते जाइए।

आप सुन रहे हैं वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के 52 ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप भी इस जगह पर मौजूद है जहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ना सिर्फ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती कैसे बढ़ने वाली, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर कितनी अच्छी वाली खूबसूरती आपको मिलने वाली है। तो चाहे आप मर्द जाते हैं चाहे आप खवातीन, दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े बहुत से आपके खर्चे भी कराते हैं। अगर आप भी जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं और खूबसूरती को जरा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल आप लोगों के लिए है। अच्छा, साथ साथ बातें करेंगे और लेकिन आप लोग किस तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, यानी कि शामली प्रोग्राम कैसे होंगे वो भी बताते हैं और साथ साथ आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि भाई हमारी बहुत सारी चाहत होती है, बहुत सारी हमारी ऐसा दिल चाहता है कि भाई ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए भाई। हाँ, तो ऐसा होता है कि हर किसी की ये भी ख्वाहिश होती है तकरीबन कि भाई हमें अगर चांस मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ चीजें जैसे घूमना फिरना, किसी बाहर जाना, कौन सा मुल्क देखना या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो कि हम विजिट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जेब जो है ना वो जरा इजाजत नहीं देती। तो आज आप मुझे जरा ये बताएंगे कि अगर आपको फ्री में, हाँ जी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में वो जगह घूमने का मौका मिले जो कि आपकी भाई फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट आपकी जगह है, तो आप फिर मुझे बताएं कहाँ जाना पसंद करेंगे। भाई मुफ्त में तो चवंदा आहिनि अगरि धिको आयो वञे तव्हां मूंखे ॿुधायो, फेवरेट जगह आहे उते तव्हांखे मुफ़्त में मोकिलियो वञे त तव्हां पसंदि कंदा, ठीकु आहे। सो बिल्कुल अगरि आप हमारे प्रोग्राम का हिसा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। और जी अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़का पेज है, और अगर आप हमारा सर्च करेंगे पेज तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। बिल्कुल जी, पोस्ट ठा करके वजह दी है तो जो लाइक किया करिए और शेयर कमेंट चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे चल रहे हैं मेरी जान। ओके जी, तो आज आप कोई फेवरेट जगह जाने का मौका मिले आप कहाँ पर जाएंगे, हाँ है क्या?

फिर आप लोगों से पूछा जाए तो आपकी अच्छे अच्छे जवाब मुझे मिल सकते हैं। बनती जाइए और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रहे तो वो भी मेरे वाले को मसलाम। आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताएं कैसी हैं? फरवा मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं, आप हमें सुन रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं। और फहीम भाई हमारे साथ कहते हैं विसरे सारो लोक शाल न विसरे तू दोखे केडो मुँह सांढ़ो आए साह में। अस्सलाम वालेकुम मौला अली सलामत अदा छा लाए खुश आयो सफा चाह को सले टकलम मस्त जी डवी।

0: ऐं ताना ॿुधी करे पोइ तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में गाना ॿुधणु ईंदा आहियो, ईअं न? चलें कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। और यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम हो गया जी। और शुएब मंकी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कि आपने प्रोग्राम की तारीफ कर दी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ, गुड आफ्टरनून, आपको भी वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है, गाना तो चला ओके, मां ॾिसां थी सभु गाना हलाइण जी कोशिश कयूं था। अच्छा, हुन खां अलावा अख़लाक़ भाई बि प्रोग्राम में आ चुके हैं। हेलो हेलो जी, आंसर तव्हां ॾिनो आहे मदीना, ओके क्या बात है, ज़बरदस्त। सिकंदर अली हमारे साथ ही, यानी कि सालार सिकंदर, वालेकुम असलाम कहते हैं आपको। और किशोर भाई कहते हैं सलाम, अदा स्मार्ट आयो आ, वेलकम करे इसे स्मार्ट, वेलकम वेलकम। ओके जी, और मोहम्मद राशिद अमान भी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें जी। आप भी फौजिया सुमरों का गाना सुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी सबके गाने लगाऊं। और हिदायतुल्लाह कहते हैं जवाब है, पहले तो मदीना घूमूंगा, फिर अगर पैसे बचे तो तुर्की जाऊंगा। अच्छा, वहीं भाई कहते हैं टॉपिक लंदन, ओके। और अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अदी अमां के वेलकम कयूं था, भले प्रोग्राम में। अच्छा, तुम आए हो तो लगता है जैसे बहारों का कोई मौसम आया हो, खुश आमदीद कि तुम आए महफिल में, यूं जिस तरह सुबह नौ में आमदे सहर हो, ओके। और रशीद खोसो भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मीरपुर खासी आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, खुश आमदीद। और साथ साथ आप बस टॉपिक के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी या फिर नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही। भाई मिलनी चाहिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इतने सारे फायदे हैं, तो भाई आप फायदा उठाइए ना, वैसे तो हर चीज से फायदा उठाते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भी फायदा उठाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई सिद्रा इतना क्यों बताते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेरी तो पर्सनली भाई फेवरेट क्रीम है, क्योंकि सबसे पहली बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है जो भाई आप लोगों की स्किन की हिफाजत भी करेगा, आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा और आपके चेहरे के जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे भी दूर कर देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो भाई जाइए परचेज कीजिए और माल लूट लो भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लो। और साथ साथ यहाँ पर टाइम भी हुआ जाता है कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने फ्रेंड्स, के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, ठीक है, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो, पेश आहे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप। व्हाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

साथ तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ही बातें हो रही हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है, ये जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वाकई भाई आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे जरूरी है बताएं तो सही, तो बिल्कुल आपको बताते हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वेलकम कहते हैं। बाकी जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम क्यों ही इस्तेमाल करेंगे, तो आप प्रोग्राम सुनिए, आपको पता चले। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं, करेंगे आपको जो मैं नंबर, बस आपने राबता करने के बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही आसान सी ये चीज लगती है मुझे कि अगर कहीं पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल ना हो तो बस आप करें या फिर मैसेज करें और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी आएगी। ओके जी, सो 3 2 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 आई मेरा नंबर आहे 0332738 4309 बुड़ी 332 73 84 309 यो ही नंबर आए। अगर एकड़ो नंबर बंद हो जे त बे नंबर ते तमा रातो करी सगो था, ए बियो तमा जो रिस्पांस जको ना तमा जी गालन जो तमा के जरूर दई छरी दो। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तमा मालूमात वटी, ब्यूटी क्रीम किथा किथा किथा आसा मनी परचेस करी सगो था। ओगरी, सो अब बढ़ते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहली वजह तो ये है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसे स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, हमारी स्किन सेंसिटिव है, ये हो गया वो हो गया, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो अच्छे से सूट नहीं कर पाता, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरा ट्राई करके देखिए, आपको यकीन जाने बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिला दी गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये जनाब पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो सिर्फ आप आए जा, ये चीज भाई आपका शुमार भी उन प्रोडक्ट में होना चाहिए जो कि भाई प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगाते हैं। तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स जो है ये आपकी स्किन को इस तरह खूबसूरत बनाएंगे। जैसे कि भाई आपने नोटिस करी होगी चीज की, बहुत सारी खवातीन जो कि महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं और उनका ऐसा होता है कि भाई टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो आपको अगर अपने टाइम की भी जरा ऐसा चाहते हैं कि भाई टाइम भी इतना ज्यादा हमारे पास नहीं है और पैसे भी इतनी ज्यादा हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, क्योंकि ये 2-in-1 फार्मूला है। वो कैसे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसी खूबसूरती मिलती है जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। क्रीम कर सकती हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इतना जनाब ये जदीद फार्मूला है कि आगे तो आपको अंदाजा हो जाए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फाइनली आप ये मेरी हमारी जो केमिकल वाले प्रोडक्ट थे ना उनसे जान छूट गई है। अब हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट मौजूद है जो कि मिनिमम और अब ये और इस्तेमाल भी होंगी हमारी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाएंगे और साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है। और सवाल ये पूछा है कि भाई हमारा तो दिल करता है कि फ्री में कोई इंसान पूरी खाने कड़ो सवाल पूछो है, तो अगर तमाजी जी का फेवरेट जगह है जिते तमा वन चाहो था पर तमा पैसा को ना है ना फ्री में तो मुख्य बुधायो तमाजी फेसबुक जी के पैनल से मैसेज कन था ठीक अभी पढ़िया वेंदा लिस्ट में गानो आए।

क्या बात है, बहुत ही प्यारे से गाना एंजॉय कर रहे हैं, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो जरा पता तो चले। अच्छा यहाँ पर साजिद भाई लिखते हैं कि मोहम्मद ताबिश और मोहम्मद हसी भी आपका शो सुन रहे हैं जनाब, दोनों को वेलकम कहते हैं।

वरना आगे जाकर वही लोग रुलते फिरेंगे और बोलेंगे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जरा लोगों के मसलों में मत पड़िए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, सुकून से प्रोग्राम में आइए, एंजॉय कीजिए और चिल मारिए जिंदगी में।

कहाँ जाना पसंद करेंगे बताएं मुझे, फ्री में अगर आपको कहीं जाने का चांस मिल जाए, भाई क्या बात है बड़ी अच्छी ऑफर है वैसे। अच्छा इकबाल आशारी भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। सज्जाद भाई कहते हैं कि मदीना जाना पसंद करूंगा, बहुत बढ़िया जी। अच्छा अनवर भाई कहते हैं यदि सबनी से गाना हलायो सवाब खटियो, गाना हलायन तो गुनाह आए इंसान पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है, हम बस ये थोड़ा सा गुनाह ले लेते हैं। अच्छा अली गुलाम बिरोही भाई हमें सुन रहे कहते हैं माशूक शर को प्ले करें, भाई मत बोले ऐसी फरमाइश। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक ऐसा मौका मिले तो जो अच्छा वैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को पता ना ही चले तो बेहतर होता है। और अगर आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है जी, आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूम लीजिए और डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा पूछिए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, अवेलेबल करानी बाकी रहती है क्योंकि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर डे स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मजे होंगे ना, बस जाए करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला, नो टेंशन, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

करें क्योंकि शेयरिंग इज मोस्ट वेल्थ। चाहे आप मर्द, चाहे आप खवातीन, या आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, इनके ऊपर स्किन ब्यूटी क्रीम एक मार्वल। अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन।

ओमी जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और यहाँ पर गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है ना तो अक्सर वो लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा मान होता है। खड़े होना सीखे और खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाए कि किसी का सहारा ना लेना पड़े। मुश्किल में सिर्फ आप ही अपने आप को संभाल सकते हैं। लोग सिर्फ आपकी कामयाबी का हिस्सा बनते हैं। आपकी दूसरों से तवक्कात कम रखें और अपनी जात से मोहब्बत करना सीखें। ये चीज

बात है जी, ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। अच्छा दर्दी दिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में स्वीडन जाना पसंद करूंगा। ओके क्यों जाएंगे वैसे वहाँ। अच्छा यहाँ पर बाहर इरफान सियाल साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद के लिए ग्रेट होस्टिंग में आर जी। गुड आफ्टरनून, हेलो सर, वेलकम सर। आप कॉल करके मालूम आज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है ताकि आप वहाँ आराम से परचेज कर सकें। ठीक है। अच्छा चाचा कहते हैं कि लाइफ में कोई मसला नहीं है। हाँ मुझे वही लग रहा था, वरना लाइफ में दंगे हो जाते हैं यहाँ पर।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करें और पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारे साथ इधर आप हमारे साथ ना। हम न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली जल्दी आप लोगों के पास, सो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इस्तेमाल कीजिए और

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क की आवाज़।
1: तो भाई कोई प्रॉब्लम्स ना हो तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पर चला चला के आप लोगों को बता रही होती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम देखा जाए तो ये एक मेडिकेटेड फार्मूला

यानी कि इससे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि आप लोगों से ना लोग पूछेंगे भैया आप इतना महंगा महंगा फेशियल कहाँ से करा के आए हैं, इतनी महंगी ट्रीटमेंट आप कहाँ से ले रहे हैं। आप उनको

जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल जाएगा, तो वो भी आप साथ में परचेज कीजिएगा। दोनों चीजें साथ में लगाइए और दोनों चीजें साथ में लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गाँव से आप हमारा शो सुन रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती, बस ये चीज मैटर करती है कि वहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी थ्री 12 पंजाब पंजवी है 970 एंड योर नंबर आहे 03-033-27-38-4309 यानी बुड़ी 332 है।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਬਿਓ ਨੰਬਰ ਆਹੀ ਬੁੜੀ 332 7384390 ਓਕੇ ਸੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਂ ਡਾਇਲ ਕਰਿਓ ਪਾਂਜੇ ਕਰੀਬੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਸੇ ਡੀ ਸਕਿਨ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਇਓ ਐਂਡ ਡੀ ਸਕਿਨ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਜੇ ਚਰਚੇ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਕੇ ਖਬਰ ਪਈ ਸੀ ਵਈ ਨੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਡੀ ਸਕਿਨ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਿਹੜੋ ਵੱਡੋ ਨਾਲੋ ਆਹੇ ਐਂਡ ਡੀ ਸਕਿਨ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ हिकड़ी जना प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आए सो तवा के लाजमी ट्राई करण घुर्जे वैसे ट्राई करण में छाई वेंदो सो तां ट्राई करी दिसो यकीन जाने भैया को बहुत मजे आ जाएंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज का अंदाजा लगा ही लेंगे। अच्छा तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है खूबसूरत बनना चाहते हैं तो जी आपका बहुत शुक्रिया आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताइए अगर आपको फ्री में कहीं पर जाने का चांस मिल जाए तो आप बताएं आप कहां जाना पसंद करेंगे और इसी के साथ साथ यहां पर हम पैनल की जाने पाते हैं तो आपकी कुछ मैसेजेस हैं। ओगरी सो हमें यहां पर ज्वाइन किया है पटीदन खान अब्दुल मनान वालेकुम अस्सलाम सदरा मुझे भी लेनी है मगर यहां पटीदन में नहीं मिल रही प्लीज प्ले करना। अच्छा तव्हां गानो लिखियो आहे और पटीदन में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त जेको हाणे तव्हांखे नंबर ॿुधायो न उन नंबर मां हिकिड़े नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो ऐं उन्हनि भाई साहब खे चओ त भाई साहब असांजे पटीदन में बि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए छो त असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करण चाहियूं था ठीकु आहे। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम सदरा मुस्कान का मतलब मुस्कुराने वाली हंसने वाली और रज रज के हंसने वाली हमेशा खुश रहे सो स्वीट हदीका क्यानी का कोई वीआईपी डिस्को वाला गाना सुनाए ओके जी डन हो गया। और गुलाम नबी फ्राम दादू कहते सिद्रा क्या हाल है आपका शो वेरी नाइस है प्लीज प्ले फकीर अमीर बख्श और ओके मैं कोशिश कयां थी तव्हां भाइरनि जो जेके पसंद जा गाना इन्फॉर्मेशन उन्हनि खे हलायूं प्रोग्राम में तकरीबन चार जो महबूब अली मोरो सिटी से सिस्टर आपके दुआ से मदीना पाक जाने को दिल कर रहा है बस आपकी दुआ शामिल हो जी जी और बहुत शुक्रिया टॉपिक में जाना चाहता हूँ लंदन सोच रहूंगा वहाँ पे जाइएगा घूमिएगा एंजॉय कीजिएगा और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा उन खां अलावा चाचा खालिद हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम बेटा सिजो कीअं आयो खुश आयो सफ़ा खुश बाश तव्हां ॿुधाए कीअं आयो चाचा और कहते हैं अच्छा तव्हां काफ़ी अच्छा चलो गानो लिखियो आ सही सही सही सही सही और ये हमारे साथी हाय सिस्टर आप कैसी हैं ये मोहम्मद अली जोगी फ्रॉम रूहल फकीर ओके ये गाने मुझे बात समझ नहीं आई वेल आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ और डी स्किन करते रहिएगा। वो हबीबुल्ला थेबू नाइस ओ जी वालेकुम अस्सलाम आपको रेडियो जोगी जापान सी नाइस वॉइस नेम जी एंड योर नेम माय नेम सदरा मुस्कान और

साथ हमारी फजली है और फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। ओके जी, प्यारी फजली को वेलकम कहते हैं। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, हाथों मत है क्यों बाबा। अच्छा, हिदायतुल्लाह कहते हैं कि लाइफ तो सही है लेकिन लाइफ है लाइफ जी। वैसे लाइफ किसी की भी ठीक नहीं होती, उसको ठीक बनाना पड़ता है। अली गुलाम बिरोही भाई हमारे साथ कहते हैं आपका शो कराची से एंजॉय कर रहा हूँ, सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच अली गुलाम बिरोही। किशोर भाई कहते मतलब आज आऊं खामोश रहा। आज नेटवर्क है और कहते हैं कि अगर अदा अगर इंसान का मकसद जगह ते वन्ये न तो पांजे खर्चे ते वन्ये, मुझी सोच या है बाकी जी खबर कोने का। या सही गाल है, वैसे मुखे भी लगन दो है ना, रो न खड़े अपने लिए सब कुछ बाद में फिर जो सुनने का तो अच्छी बात है। अच्छा, दर्दी दिल कहती है टॉपिक में तुर्की, वैसे ये टॉपिक एक फन के हिसाब से लिया जा रहा है तो बहुत ही अच्छे से आप जो इन टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं सारे लोग, और यहाँ पर आप लोगों की पसंद के गाने भी हैं जी। ये इतना छोटा सा गाना था, जल्दी नहीं खत्म हो गया, चलें कोई बात नहीं, ये दूसरा गाना हमारी लिस्ट में है। और उसके अलावा

वाह, इन्हें ठोई को रहता हूँ। चल यहाँ आप डेज स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिएगा, ठीक है, जरूरी है। और यहाँ ही तमाम आते बैठा मोटान थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डेज स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डेज स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए।

GFM Network सिंध की आवाज। असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। असली ग्लो हर दिन का शो। खूबसूरती जो असल राज जलाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में। डार्क स्पॉट्स

हां जी मेरा रांझना, क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब, और डी स्किन फेस वॉश ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो जरा। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आके मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आपका कोई ऐसा फेवरेट, मतलब फेवरेट आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जाना चाहें, और अगर आपको कोई मुफ्त में वहाँ पर भेजे तो आप मुझे बताएं आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि फ्री में तो भाई बस होने चाहिए। ओके, सो तुम टॉपिक ते गालायो न खलावा पोस्ट के तुम लाइक एंड शेयर करना वनो, ठीक है। जगह जगह सोना मानो सा अगर फेसबुक ते मौजूद आए पोस्ट के जरा लाइक एंड शेयर करना हलो। उन के अलावा मां तमा की बुधाया थी, तो अगर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करन चाहियो था या वरी हां मार्केट में डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल थी वयो है, तो डी स्किन फेस वॉश अगर तमा इस्तेमाल करन चाहियो था तो उन के बारे में भी थोड़ी तमा के नॉलेज हुजन जरूरी है। सो डी स्किन फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है अगर तमा क्रीम का थोड़ा, तो तमा डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल करे सगो था। डी स्किन फेस वॉश जो है तमाम जबरदस्त क्वालिटी जो फेस वॉश है बाबा, हर स्किन के मथा सूट करने वालों प्रोडक्ट है। आई हर स्किन के सफाई वीआईपी बनाए छी दो, तवा जी स्किन अगर एडिया है बाबा कोई भी प्रोडक्ट जल्दी सा इजीली तवा जी स्किन ते जेको मैच ना ही करी सकंदो, तो तवा डी स्किन फेस वॉश ट्राई करी दिसो। आई डी स्किन फेस वॉश जेको हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है, तवा जी स्किन जे अंदर ताई वेंदो, तवा जी स्किन के हाइड्रेट कंदो आहे, तवा जी स्किन के डीपली क्लीन कंदो आहे, तवा जी स्किन के मॉइस्चराइज भी रखंदो आहे। सो डी स्किन जो फेस वॉश तवा हाने किथा भी वनी बसानी परचेज करी सको था। आई डी स्किन जो फेस वॉश न मिली तो पोई तवा के डायल करनो आहे जनाब 03 1250 25 9 0 7 बुड़ी 312 50 970 आई बियो नंबर आहे 03 27 38 43 09 बुड़ी 332 73 84 309 ही नंबर आए जिसे तुम राबतो करे इजीली पांजे करीबी जनरल स्टोर्स से डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो डी स्किन फेस वॉश भी बाबा तमा जी खूबसूरती के चार चंड लगाए छी दो, डी स्किन जो फेस वॉश तुम लाजमी ट्राई करी दिसो। आई तुम अगर कोई भी सुठो फेस वॉश यूज करन चाहियो था या फिर तमा के कोई भी साबुन में या फेस वॉश में तमा के खबर ना पंदी, तो बाबा केडी चीज असा स्किन जलाए जरूरी आहे, तो ता डी स्किन फेस वॉश एक मरतबा ट्राई करी दिसो। मतलब एतरो जबरदस्त प्रोडक्ट आहे सफा, तमा के चवंदम तो बाबा हर एक चीज के फिटी करे ता डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करी दिसो, यकीन जाने आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इतनी प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है की जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे कि वाह जी वाह, गाल में दम आहे। डी स्किन जो फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाई चीजों गडल

आयो पानी खूबसूरत जो ख्याल रखो तान रखना तो केर रखंदो तो ये तुम्हारी स्किन डिजर्व करे थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश नमले ते नंबर ते रातो करी वटजो पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वटजो।

दिलबर ही नहीं जानता। ओके जी, शमन के गाने की फरमाइश थी तो मैंने सोचा चलो शमन का गाना आप लोगों को। और स्मार्ट की स्वीडन जो काफी चीजों मुख्य वणंदियूं आहिनि सब का खास गाल होते 95% हॉस्पिटल फिन था। अल्लाह वाह वाह। और कहते हैं सिस्टम अच्छा यानी कि सुठो सिस्टम आ दुनिया जो खूबसूरत तरीन कंट्री आहे सब का बेहतरीन तालीमी निजाम काफी कुछ आहे पो त सुठी गाला वनो वनो मुखे भी वठी वंजो गन। अच्छा मोहम्मद जवान कहते हैं हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम फ्री करवाना चाहते हैं, उसके लिए कैसे राबता करें? आपको जो नंबर बता रही हूँ ना उनके ऊपर राबता कीजिए, ठीक है? और चाचा कहते हैं कि सिंधी में चाचा सिंधी में मां नंबर बुधाने सिखी वही आयो। अच्छा शुएब मंगी कहते हैं चौपे करबला जाना पसंद करते थे, जबरदस्त हो गया। और यासीन खंड हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं भाई को भी क्रीम फ्री। अच्छा कहते हैं भाई क्रीम कोई भी फ्री नहीं करेगा। हाँ जब आप दुकान खोलेंगे तो सही बात है, या फ्री क्यों देंगे भला, तो फ्री देनी भी नहीं चाहिए। थोड़ो बाबा पैसो खर्च कयो, पाण ते थोड़ो पैसो लगायो जे तव्हांखे खबर पए त खूबसूरती जेका आहे न हासिल करण थोरी मुश्किल त आहे, पर एतिरी बि मुश्किल न जेतिरो हुन खे मुश्किल तव्हां बणाए छॾियो आहे। अच्छा रमजान भाई तुम्हारा हेडो वडो कमेंट करी छो आए, थैंक यू वेरी मच। और मुगल उमरानी हमारे साथ मौजूद यहाँ पर है, थैंक यू जी। और रमजान भाई तुम्हारा गाने की फरमाइश कई है सदाई दुख वो गानों खड़ी आयो, कड़ो दुख मिलो भला तक सुन रहे हैं भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा फहीम भाई भी हमारे साथ हैं, फहीम भाई एंजॉय करें प्रोग्राम, बढ़िया जी एंजॉय करें। और चाचा खालिद कहते हैं हथ मथे क्यासी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जोर डाडो आ बाबा डाडो आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा जुल्फकार अली खोसो हमारे साथ कहते हाय सिद्रा मुस्कान जी, अरे नाम बोलो, अरे आपका नाम है जुल्फकार अली खोसो भाई, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा स्मार्ट भाई उस गाने के जो शायर थे ना वो मेरे ख्याल में वो नहीं है जिसने अभी एक होटल खोला है, कौन है? जागीरानी, इरशाद जागीरानी। बिल्कुल वही थे।

बिल्कुल जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां वठी अचो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा वीआईपी गोरो चिटो बणाए छॾींदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते कोन थी मिले त बाबा नंबर छा लाइ ॿुधायां थी, नंबर ते राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए वठो, क्योंकि जनाब खूबसूरती को मज़ीद निखारण के लिए अपनी रोज़मर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन को मज़ीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी, आपकी जल्द जो है ना वो इतनी प्यारी हो जाएगी कि लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे और आपसे पूछेंगे भाई बताएं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उन्हें बताइएगा जनाब ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर

स्किन को बनाए मजीद खूबसूरत इसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, अपनी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए डी स्किन फेस वॉश का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन ब्यूटी सोप हो, दोनों चीजें नहीं बल्कि फेस वॉश हो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है। आप कहीं से

ओके अच्छा जयपाल भाई लिखते हैं कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपना सदे। और भाऊ ओके हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और गांवर खान हमारे साथ है खैरापुर मीरत से, आप हमारा शो सुन रहे हैं। शायद आपका नाम में थोड़ा गलत रीड करूं तो उसके लिए माजरत करते हैं। और हमारे साथ जी माहीन बलोच कहती है ओएसटी की फरमाइश कर दी, 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको ओएसटी हम सुन लेंगे, ठीक है। और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सिडो सॉन्ग मिला आपको मेरा? आपका गाना सच्ची बताऊं तो नहीं मिला मुझे। और जयपाल भाई कहते हैं कि भाऊ आपका टॉपिक पर क्या जवाब है, जरा हम भी तो सुने। मेरा जवाब तो बिल्कुल यही होगा, अगर फ्री में क्या मतलब, मैं तो खुद ही जाऊंगी। फ्री वाला तो सीन खैर हमारी जिंदगी में नहीं है वैसे अगर चांस मिल जाए या फिर ऐसा कोई सीन हो जाए तो सबसे पहले सऊदी अरब आ जाऊंगे, क्योंकि मेरा एक फेवरेट मतलब ये है कि मैं जाऊं वहां पर, हर एक चीज देखूं, हर सारी चीज वहां पर विजिट करूं, इतनी सारी चीजें हैं वहां पर कि बस वहां जाए और खो जाए, कभी वापस ना आए, बस यो दिल चवंदो आए। और कहते हैं टॉपिक भाऊ जाएंगे जरूर, जी जी इंशाल्लाह जाइएगा, खुशी के साथ जाइएगा, खुशी के साथ मतलब हैप्पी होके जाइएगा और हमारी भाभी खुशी के साथ जाइएगा। करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना मिलने की सूरत में

ऐसे ही रहा करें आप, आज नहीं कि शोला ही गाना सही है ना हानी। पर रिजवान अली कहते हैं, बहन कैसी हैं आप, आपका शो नाइस है, जबरदस्त शोला। अच्छा आपने लिखवाएंगे, ओके जरूर इस्तेमाल किया होगा, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए हैं, सफा वीआईपी थी व्यायो सो तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए, तो भी फिल्टर की जरूरत को न पड़ी। और अदो चे तो इन हिसाब का तू ढो बोरिंग मानुस है, मतलब चेंज सो जी भी जिंदगी में ट्रेंड आया है मुंह करे ट्राई को कया जी छोक मतलब किरी पवन जो भी ट्रेन इन कश्मीरी चूड़ी आयो हल बो स्टैली आयो जग खी घुमंदी वतन पयो हल बा वरी यो बो वारो बुरको हले यकीन जानो एक भी चीज को न वरती अलाई छो इरिटेशन थी जडे सभी मानन के उए चीज होंदी आन असा थोड़ा अलग नेचर जा मानू आयो सो असा चना वो कम हरगिज न कर जो सब कन पया तो समझो था ऐसा डिसन घुर्जे बाबा खबर हो जे मुल्क जाने जी छापे वाले मुल्क जाने में अयुन खान अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे सिद्रा मैंने भी एक हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रही है। और अब्दुल गफार भाई कहते लाजवाब शो मेलसी सी आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।

0: کے ساتھ ہی. وعلیکم اللہ خان. یہ ہمارے پروگرام
1: ہر وقت

ओके जी जी यहाँ जल्दी से कर दे, यहाँ डी स्किन ब्यूटी खुली है ताकि आप वहाँ से जाएं तो आप करें और इस्तेमाल ठीक है। कहते हैं शमन भा खर्च करता जरूर इंदो बाकी या भी गाला है। साजिद अली भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। और ये रमजान भाई सारी सारी इतनी सारी। और ये दो कहते हैं कि हाँ ना अदा जने केर फ्री में घुमाण मोकले तो एड़ी कंट्री जो नालो वठे जेको सब खां महंगो हो जे। सब खां महंगो लंडन अथव अला, एडो महंगो अथव छा बुधायो। अगर अड़ी गाल तो लंडन वनो, बाकी अगर दिल की गाल तो जादे ताजे दिल से ओडा हल्या वनो, खर्च जो टेंशन न वो साहब वेठो।

टाइम खत्म हो गया जी हमारे प्रोग्राम का, और ये हमारे साथ है आई एम अवेश फ्रॉम सखर से, पहली बार प्रोग्राम शामिल हो रहा हूँ आपके भाव हो सके तो मुझे अहमद मुगल का पहली मर्तबा इतनी देर से आए तो गाना तो प्ले हो ही नहीं सकता था, तो बहुत शुक्रिया आपको, दिल से वेलकम कहते हैं, आपका गाना कल या परसों लगा लेंगे, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ है। और जयपाल भाई थैंक यू इतने सारे मैसेजेस के लिए, और बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया जो जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिनके फीडबैक्स रह चुके उनसे माजरत कर देते हैं। अखलाक भाई लास्ट में प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया। नसरुल्ला जतोई भाई आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ है। सो वरी तव मुख्य ज्वाइन कजो 5 बजे वाले प्रोग्राम में, यानी पूरे 5 बजे खां 6 बजे ताई तवाजो संजो साथ हुंदो आहे प्रोग्राम में। सो पांजो हेडो सरो ख्याल रखो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेक कंदा रहो बाबा, यानी ना ही सिलसिला।

तव्हांजो फ़ाइदो रुगो इसराईल खे थियो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पहिरीं अक्टूबर खां फ्लोर मिल्स खे सरकारी कणक जारी करण जी हिदायत करे छॾी। कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई तेज़ करण जो हुकुम। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सूबे में कणक बाबति इजलास। सूबाई वज़ीरनि ऐं ॿियनि जी शिरकत। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त हुकूमत जी पहिरीं तरजीह शहरनि खे सस्तो अटो फराहम करणु आहे। कणक जे ज़खीरनि ऐं विरासत लाइ निगरानी वारो निज़ाम बरक़रार रखियो वञे। शहरनि जो ग़िज़ाई तहफ़ुज़ यकीनी बणायो वञे। गरीब ऐं पोरियत तबिके खे महांगाई खां बचाइण लाइ वज़ीर आज़म पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कोशिश हूंदी त वधि खां वधि शहरनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तरण, छींदा फातिमा, अली परवेज़ मलक बिठन थींदी। टूल वे लाइ कयो वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। नव दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मस्तोंग में दहशतगर्दनि गाॾीअ खे क्वाड कॉपरेटर ज़रिए निशानो बणायो। कार्रवाई दौरान दहशतगर्द कमांडर नकीब समेत टे दहशतगर्द मारिजी विया। पशीन में सीटीडी जी कार्रवाई जे नतीजे में छह शकी दहशतगर्द मारिजी विया। सीटीडी तर्जुमान मूजिबि ऑपरेशन दौरान चार अहलकार बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालक पाबंदी मड़ियल तंज़ीम सां आहे। लबनान जे घरू वज़ीर जो ममलकती वज़ीर तलाल चौधरीअ सां गॾु यादगार पाकिस्तान जो दौरो। लबनानी घरू वज़ीर पुलिस लाइन्स जो बि दौरो कयो। लबनानी घरू वज़ीर यादगार पाकिस्तान ते गुल बि रखिया। एफ सी ए दस्ते लबनानी घरू वज़ीर खे सलामी बि ॾिनी। खिपरो वेझो अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं ज़मीनदार हसन अली गार्डन में सवार हथियारबंदनि बंगले ते का करे तशदुद बाद ज़मीनदार हसन अली चांयो खे अॻवा करे विया। वाके बाद शहर में शटर बंदि हड़ताल। अॻूणे सूबाई वज़ीर हसन अलीअ खे कंहिं अॻवा कयो आहे पुलिस बेख़बरु।

0: ऐं अमरीकी फ़ौज ईरान में किरियल पंहिंजे जंगी जहाज़ जी पायलट खे बचाइण वारी वीडियो जारी करे छॾी। अप्रैल में पेश आयल वाक़े जे 6 महीननि बाद वीडियो जारी कई वई। अमरीकी फोर्स F-15 जहाज़ जे कुझु
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी का भी जरूरत आए क्लिनिक टेकन होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो लई।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: जीएफएम 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: है नबी का हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जी एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम
3: कोर थियल इजलास मुलतवी ओमान ऐं ईरान इजलास मुलतवी थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त सऊदी अरब जे दरख़्वास्त ते ओमान में अॼु रिक्तवी थियो आहे। हिते हमले में बि ईरान मुलविस न आहे। ईरान ऐं विचोभर जे मुल्कनि में शिकत आणण जो फ़ाइदो रुगो इसराइल खे थियो।

0: गरीब ऐं पोरियत तबके खे महांगाई खां बचण लाइ वज़ीर आज़म पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। कोशिश हूंदी त वध खां वध शहरनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। वफ़ाकी वज़ीरनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पहिरें मरहले में शहरनि खे NIC नंबर मोकिले रजिस्ट्रेशन करणी पवंदी। ॿिए मरहले में गाॾीअ जी रजिस्ट्रेशन थींदी। टूल वेयर लाइ 20 लीटर ऐं नंढनि गाॾियुनि लाइ 30 लीटर ताईं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मस्तूंग में दहशतगर्दनि जी गाॾीअ खे क्वाड कॉपरेटर ज़रिए निशानो बणायो वियो। कार्रवाई दौरान दहशतगर्द कमांडर नकीब समेत 3 दहशतगर्द मारिजी विया। पश्चिम में CTD जी कार्रवाई जे नतीजे में 6 शकी दहशतगर्द मारिजी विया। CTD तर्जमान मूजिब ऑपरेशन दौरान 4 अहलकार बि ज़ख़्मी थिया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालक पाबंदी मड़ियल तंज़ीम सां आहे। अदालती आज़ादीअ सां गॾु एहतसाब ज़रूर आहे। सुप्रीम कोर्ट में नंबर खां पहिरें केस मुक़ररु करण वारे जवाबदार बि ख़तम करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ आफरीदी तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त हर तकरार जी पुॼाणी अदालती फ़ैसिले ज़रिए थियण ज़रूरी आहे। अदालतुनि में केसनि जी मुक़ररी जो समूरो तरीक़ेकार तब्दील करे छॾियो आहे। हाणे टेक्नोलॉजी ज़रिए केस मुक़ररु थींदा आहिनि। केसनि जी शरह बि घटी आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी लताड़ा खिलाफ़ हैदराबाद में उमेदवारनि शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप 53 ॾींहं में जारी। मेरठ जे बहाली लाइ भुख हड़ताल बि जारी। ACUP वफ़द जी यकजहती तौर भुख हड़ताली कैंप ते शिरकत। खेरपुर में बि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी मेरठ जी लताड़ा ख़िलाफ़ शागिर्दनि जी रैली। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खेरपुर में स्टूडेंट्स अलाउंस पारां एहतजाजी रैली कढी वई। मेरठ बहाल करण जो मुतालबो। खिपरो वेझो अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं ज़मीनदार हसन अली चायो मुबैना तौर अॻुवा। शहर में शटर बंद हड़ताल। ॿिनि गाॾियुनि में सवार हथियारबंदनि बंगले ते काह करे तशदुद बाद ज़मीनदार हसन अली चायो खे अॻवा करे विया। वाके बाद शहर में शटर बंद हड़ताल। अॻूणे सूबाई वज़ीर हसन अली चायो खे कंहिं अॻवा कयो। मेयर वेझो ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल। कचे तरफ़ वेंदड़ ॻोठ जाम खान भट वासी ज़फर भट खे पतण ते गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। वारसनि जो चवण खां कोबे वियो आहे। ज़रिए जो चवण आहे त ज़मीन जे मालिके तां आलो ई धुरनि में तकबोरी मीरवा बरसा मिलियल लाश जी सुञाणप टंडरो बाग़ो वासी हाकिम शाह जे नाले सां थी। पुलिस मूजिब मक़तूल खे पुठियां गोली लॻण पवंदी। मामले काज़ी अहमद वेझो मीर रुकण शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबादगारनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। आबपाशी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। आबादगारनि मूजिब हुन जे पुछड़ में पाणी न पहुचण सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी विकिरो कंदड़ अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। दादू गिरफ़्तारीअ बाद गुम वारसनि जो औरतनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाज। बाईपास वटां बंड ऐं शाह ज़मान लगारी खे गिरफ़्तारीअ बाद गुम कयो वियो। मुख़्तलिफ़ थाणनि ते गोला समेत एहतजाज। मटियो ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज। शहरनि बुघिया महिला खां रैली कढी। हेस्को ऑफिस आॾो एहतजमल करण ऐं कलाकण जाम लोड जो मुतालबो। बसनि जो पीअण जे पमन थईम आरक पियो। कराची रोड ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो ऐं ॻोठनि खे पाणी फराहम करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान छण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथ कंदा आहिन। अलहम्दुलिल्लाह हे चेकअप हर खमीस ताईं 5 वगे मो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: प्रस्तुत संगीत जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
1: धरती से जुड़ा है कलंद,
2: उसी खिती है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सच्चा जो आवाज गीत साज ये हैदराबाद 0.6 सुनते जो आदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है दाल शहबर्ग
2: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: FM
1: पहला शरिया बेस्ड फाइनेंसिंग
2: का सच गीत जवाबा हैदराबाद मटियारी FM 91.6 जवाबा
3: के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: GA FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।

ਇਹ ਰਹਿੰਦੜ ਤਮਾਮ ਮੁਆਜ਼ਿਜ਼ ਬੁਧੰਦੜਨ ਕੇ ਲਾਖੀਣੇ ਲਤੀਫ਼ ਜੀ ਬੋਲੀ ਮਹਿਰਾਨ ਜੀ ਛੋਲੀ ਐ ਮਿੱਠੜੀ ਅੰਮੜ ਜੇ ਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ऐ जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम टीम जा कुर्ब कबूल पवन। मौजे सामाईन अवां जा कहड़ा हाल आहिन, अवां खुशबाश आहियो, अवां ठीक ठाक आहियो, अवां चाक चंगा भलाई मतारा जोड़ आहियो। असांजी दुआ है त सदाई तारन में चंड हुजो, खीर में खंड हुजो, मेवन में अंब हुजो, ऐं कॾहिं पवां जी मुर्क मेरी न थी। सदाई अवां जे लुड़कन जो डुकार ऐं मुर्कुन जो सुकार हुजे। शाल अवां खे कोसो वा न लॻे, शाल अवां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, जुग जुग जीओ, मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौज़े सामाईन, जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम स्टेशननि जे भर में लॻल टावर ऐं टावर तां आवाज़ पखेड़ो उॾार करे उन्हनि समूरनि मोहबती माण्हुनि ताईं ही म्यूज़िक, ही साज़, ही आवाज़ पहुचाए पियो, जंहिं शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ीअ जी अॼोकी ख़ूबसूरत शाम अव्हां जे नाम कंदे, अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान, अव्हां जो आरजे, अव्हां जो पंहिंजो, जी हा, उहो ई साॻियो, आऊं आहियां यूनिस बकारी। तोसां रुअण बि ॾुखियो, तोसां खिलण बि ॾुखियो, तोॾे अचण बि ॾुखियो, तोसां मिलण बि ॾुखियो। दिल जो अहवाल दिलबर तोखे ॿुधाइणो आहे, दिल में रखण बि ॾुखियो, त तोसां सलण बि ॾुखियो। आवाज नगर जा खूबसूरत तोहफ़ा खणी अवां जी ख़िदमत में यूनिस बकारी। यकीन सते वॻे ताईं जो साथ इनशाला निभाईंदासीं। अवां जेकॾहिं शामिल थियण चाहियो था त मैसेज मोकिले सघो था। टाइप करियो MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखजो। पंहिंजो नालो 888 यानी 8881 ते मोकिलिजो। पहिरीं कलाक में तव्हांजा मैसेज शामिल कंदासीं ऐं ॿिए कलाक में तव्हां जूं लाइव कॉल्स शामिल कंदासीं। हाणे अव्हां जी मर्ज़ी आहे, तव्हां मैसेज मोकिलण चाहियो था ऐं मौजूदगी जो अहसास ॾियारण चाहियो था त हाणे ई मोकिलियो। तेसीं ताईं हलूं था हिकड़े सदाबहार आवाज़ ॾांहुं, हिकड़े अहिड़े आवाज़ ॾांहुं जीअं आवाज़ में जेको ट्रैक ॿुधायूं पिया उहो दुआया आहे, मोहबतनि वारो आहे। अचो त गॾिजूं था।

वेलकम बैक मौजूद सामाइन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली, GAFM मेरप्रकाश, GAFM मटियारी, GAFM सकरंड, GAFM मोरो, GAFM मेहरापुर, GAFM सखर एंड GAFM लाड़काने जो गदिल आवाज। हाजिर है अवां जो पेंजो शो जो को अवां बुधो पिया आई उन शो जो नालो है सिंधड़ी जी शाम। अवां जो मेज़बान अवां जो आरजे अवां जो पेंजो यूनुस बकारी अवां सण मुखातिब है। जेकर अवां शामिल थियण चाहियो था जो के शो में त टाइप करियो MTI स्पेस दियो पेंजे गोठ ऐं शहर जो नालो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। अॼु असां ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो। ओके जनाब, नंढड़ो अजब अली असांखे ॿुधे पियो। नंढड़ो अजब अली ऐं नंढड़े अजब अली ए ख़ासकेली साहिब, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी, लख थोरा अवांजा ऐं अवां असांखे जॉइन कयो आहे। अवांजो मोहबतूं ऐं भलीकार चवंदासीं तव्हांखे।

जी मुझे समीन साथ ऐं आवाज़ जे साथ में तव्हां जॾहिं टाइप कयो त MTI लिखजो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो 888-881-8881 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो।

ജി ലഷാരി സാഹബ് അങ്ങോട്ട് ഫാരം ഖാൻ ബുദ്ധ വെൽക്കം ബലികാർ जीवन समय नवा केड़े शहर गोठ वायण वस्ती का बुध पाया जै जै शहर इलाके वायण वस्ती का बुध पाया बुधा सो तो मौसम की आहे गर्मी आहे या मौसम नॉर्मल आहे चकाने जो केतर इलाकन में गर्मी की शिद्दत है केतरा ही अड़ा इलाकन जिते बरसात वसी है जी स्पेशली कराची वारन इलाकन ठट्टे सुजावल वदीन थरपारकर इलाकन में बरसात वी है सजण सांगी जी वांड मिठी मां गुलाब गुल असे बुधे पियो गुलाब गुल वेलकम चंदासी वांगे भलीकार थैंक यू जी जना मेहरापुर का इंतजार हुसैन यू मैसेज पहुतो वेलकम चंदासी इंतजार भलीकार वेलकम

जी जनाब, फकीर आमिर झिंझी असांखे थरपारकर में नोहटे जी नगरी में ॿुधे पियो। ऐं फकीर आमिर झिंझी ॿुधाए थो त उते हींअर बरसाति वसे पई ऐं माहौल ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ॾाढो ख़ुशबूदार माहौल थी वियो आहे ऐं थर खे हुई बरसाति जी ज़रूरत आहे। सो फकीर आमिर झिंझी साहिब, तव्हां ॿुधो था तव्हांजा वॾा वॾा मोहबतूं। फौज़िया जो गानो गॾिजी ॿुधूं था, ब्रेक खां पोइ बाक़ी बिना ब्रेक ॻाल्हियूं कंदासीं।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़। बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

ॾिसी वक़्त नाज़िक प्यारा हलिया विया वॾी बांसुरी थी नथी कोयल कूके मोहबत संदा साज़ सारा हलिया विया घुरबो हो फिको पाणी त मिलंदो मिठो शरबत हो उतां अॼु मुसाफ़िर उञारा हलिया विया उतां अॼु मुसाफ़िर उञारा हलिया विया वेलकम बैक मज़े सामेन GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज़ मां शो ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ऐं अव्हांजो आरजे वञो मेज़बान असां मुखातिबु आहे यूनिस बकारी समूरियूं मोहबतूं प्यार ऐं पंहिंजाए पवां जे नाम

जिते तव्हां असांखे ॿुधो था असांजी मोहबतूं आहिनि सदाई सुखिया हुजे। गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी ऐं गुलाम सरवर लाशारी अवां बि असांखे जॉइन कयो आहे। डोकिया वाह खां मोहबतूं ऐं भलीकार यासीन लाशारी, गुलाम रसूल लाशारी ऐं गुलाम फरीद मोहबतूं अवां जूं भलीकार भलीकार भलीकार। पेज अपडेट थी रहियो आहे, जेसिताईं तव्हांजा मैसेज असां वटि ईंदा तेसिताईं पाण हलंदासीं ट्रैक न, जितां ज़बरदस्त ट्रैक अवांजे लाइ गूंजे थो साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में। ही ज़बरदस्त आवाज़ अचे त गॼी ॿुधऊं, ऐं आवाज़ में आहे दर्द जी ॻाल्हि, डुख जी ॻाल्हि, ऐं दर्दनि में बि इहो आहे त हुन में वास्ता ॾिना था वञनि। ज़बरदस्त बाबा दर्द न ॾियो, ऐं दर्द ॾींदड़ जेके आहिनि उन्हनि खे ई अर्ज़ु आहे। गॼी ॿुधी था वठूं शमन वीराली जो आवाज़, शानदार ट्रैक आहे, इंजॉय कजनि।

वाओ जबरदस्त ट्रैक आहे अमा इनके एंजॉय कयो पे मौसम के एंजॉय कयो पे आई गरो गडा संगे कुंडरी खा चोहन कुमार कोली याद कयो डॉक्टर अनीता चौहान संगीता पारस आई पक्को मोड़का असा के सेठ लालचंद कोली भी दे पे ता लिखे तो कुंडरी में बरसात आहे वाओ जबरदस्त आहे असी अमा के बरसात यु मुबारक हो दियो दोस्तों मेहरबानो कदरदानो मौसमियत खाते एकड़ी कथी कई है जेमे मुख्तलिफ जके इलाका ने मुल्क जा उन इलाके में बरसात 13 तारीख 15 तारीख जी अगकथी थियल है दुआए तो यह बरसात सभी सुठी साबित थिए सुठो सोण साबित थिए इन ट्रैक के बुधंदे बुधंदे कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक होंद जो वी 45 वो ब्रेक होंद उन वापस इंदी असा खोड़ गाल करण यकीन गाल असाज बर्दाश्त कन्दा असी भी तक कन्दा गाल सो बाकी सवा कलाक साथ है असा केर होंद यो बुधाइंदी तक ट्रैक।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

जी जना वेलकम बलिकार खुशामदी जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के स्टूडियोज में अवां शो बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम आई अवां जो आरजे अवां मेज़बान तासान मुखातिब है यूनुस बकारी। सो दोस्तों मेहरबानो कदरदानो साज ए आवाज के साथ में यकीन असो साथ हमेशा सते वगे तई हों पर असा वट जेडी मेल ही मां मुखातिब आया असि जै स्टूडियोज में लाइव आया वो स्टूडियो है मातली जी एफ एम 88.90.4 जो उन स्टूडियो के बारा शदीद बरसात जारी थी वही है उन बरसात के महसूस कदे यकीन मौसम के भी इंजॉय पे क्यों उन मुखातिब आयो। सो पा ट्रैक बुधी था वो उन न्यूज ब्रेक हों।

ब्रेक खां पोइ असां ईंदासीं तव्हांजो कॉल्स वठण, केॾा न वञो साथ असांजो हूंदो ज़बरदस्त जारी उसारी। नंढड़े ब्रेक खां पोइ असां करे हूंदो तव्हांजो यूनिस बकारी सरमंद सिंधी साहब जी सदाउनि खे हवाउनि में गुंजाईंदे वठूं था हिकिड़ो ब्रेक।

कंहिं बि सियासी जमात वटि इस्लामाबाद जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार नाहे। सूबनि जा वॾा वज़ीर एहतजाजनि लाइ सरकारी मशीनरी जे इस्तेमाल न थियण खे यकीनी बणाइनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई जी लांग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत चयो आहे त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे एहतजाज में शरीक थियण लाइ मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतूं एहतजाजनि लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल बि थियण न ॾियनि। कंहिं सियासी जमात या अॻवान खे बि शहरनि जी चुरपुरालो रंडक विझण जो बि अख़्तियार नाहे। इस्लामाबाद इंतिज़ामिया ऐं घरू वज़ारत चीफ सेक्रेटरी ऐं आईजीस खे हिदायतुनि ते अमल खे यकीनी बणाइण जी हिदायत करे छॾी।

व्याज जी शरह 11.5% ते बरकरार, स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। स्टेट बैंक मूजिबि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी व्याज जी शरह बरकरार रखण जो फ़ैसिलो कयो। ईंदड़ 3 महीननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरकरार रहंदी।

अदालती आज़ादीअ सां गॾु एहतियात ज़रूरी आहे। सुप्रीम कोर्ट में नंबर खां पहिरीं केस मुक़ररु करण वारी सवाबदीद बि ख़तम करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यहया आफरीदी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हर तकरार जी पुॼाणी अदालती फ़ैसिले ज़रिए थियणु ज़रूरी आहे। अदालत में केसनि जी मुक़ररी जो समूरो तरीक़ो बि तब्दील करे छॾियो आहे। हाणे टेक्नोलॉजी ज़रिए केस मुक़ररु थींदा आहिनि, केसनि जी शरह बि घटी आहे।

मीर रज़ा जे नक जी हॾी भगल ऐं मथे ते ज़ख़्म जा निशान हुआ। मीर रज़ा जा ज़ख़्म मौत खां पहिरीं जा हुआ। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया जो अदालती कमीशन आलो बयान। डॉक्टर सुमैया मूजिब गोली लॻण सबबि मीर रज़ा जूं पासराछियूं फ्रेक्चर थियूं, फिफड़नि ऐं दिल खे नुक़सान पहुतो। अदालती कमीशन में FIR जी दाख़िला ऐं केस जी जाच बाबति पुलिस आफ़ीसर्स खां बि सख़्तु पुछाणो। मीर रज़ा जे वालिद मूजिब पुलिस पहिरियां चयो त 24 कलाकनि खां अॻु केस दाख़िल न थींदो। मंझंदि जो वियासीं त SHO रेस्ट रूम में हो।

खिपरो भरिसां अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं ज़मीनदार हसन अली चांहियूं मुबैना तौर अॻुवा। शहर में शर्तबंद हड़ताल, ॿिनि गाॾियुनि में सवार हथियारबंद बंगले ते काह करे तशद्दुद बाद ज़मीनदार हसन अली खे अॻुवा करे विया। वाके बाद शहर में शर्तबंद हड़ताल, अॻूणे सूबाई वज़ीर हसन अली चांहियूं खे कंहिं अॻुवा कयो, पुलिस पे ख़बर पड़ियल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी मुबैना लताड़ खिलाफ हैदराबाद में उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जी एहतजाजी कैंप जे 53 ॾींहं बि जारी। मेरठ जी बहालीअ लाइ भुख हड़ताल बि जारी। SUP वफ़द जी यकजहती तौर भुख हड़ताल में शिरकत। खैरपुर में बि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी लताड़ ख़िलाफ़ शागिर्दनि जी रैली। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में स्टूडेंट्स अलायंस पारां एहतजाजी रैली कढी वई। मेरठ बहाल करण जो मुतालबो।

मलीर जी अदालत प्रोफेसर आरिफ साकी जे केस में जवाबदार कोनेन शाह के जेल मोकले छो। जांच ऑफिसर के चालान जमा कराने की हिदायत। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरिफ साकी के धमकियों देने वाले केस की बुधनी थी। पुलिस जिस्मानी रिमांड मुकम्मल थे बाद गिरफ्तार जवाबदार कोनेन शाह के अदालत में पेश कयो। पुलिस मौजिब प्रोफेसर आरिफ साकी के मोबाइल फोन ए व्हाट्सएप जरिए धमकियों मिली हुई जिनो केस सचल थाने में दाखिल किया वो। कच्छे के मुख्तलिफ़ गोठन के रहवासियों को पीने के पानी की खोट खिलाफ कौमी शाहरा से धरणो। गोठ नूर मोहम्मद थहीम अब्दुल्ला मला ए आरिफ पली जो समेत बेन गोठन में पानी जो बोहरान संगीन थी वो। रहवासियों औरतों ने बारन समेत छठो कराची रोड से एहतजाजी मुजाहरों कर धरणो हो। गोठन के पानी फराहम करने जो मुतालबो हो।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत ॿ ॼणा क़तल। हिक ॼणे जो लाश हथ छठे वेझो मुड़ुस हथां ज़ाल क़तल। जवाबदार ज़ाल यासमीन खे घरू तकरार तां बेदर्दी क़तल कयो। जवाबदार गिरफ़्तार। मेयर वेझो ज़मीनी तकरार तां नौजवान क़तल। ॻोठ जाम ख़ान भोट वासी ज़फ़र भोट खे पतण ते गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। वारसनि जो चवण आहे त जहिड़े सां को बि वास्तो नाहे नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। बदीन वेझो हथायल ॿोरी बंद लाश जी सुञाणप टंडो बागो वासी हाकिम शाह जे नाले सां थी। पुलिस मूजिब मक़तूल खे पुठियां खां गोली लॻल आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद वधीक ख़बर पवंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खिते की बनी है आवाज।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दिहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: जीए FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: कहिड़ो कुर्ब कहिड़ो कुर्ब ख़ुशि हुजो
1: ऐं प्रोग्राम तव्हांजो अहिड़ो वीआईपी लॻे पियो शाम जो पहिर आहे वरी तव्हांजो आवाज़ या मुंहिंजी सम्झे त को हीउ प्रोग्राम राति जो नवे ताईं हली वञे आवाज़ थी
0: न न न नवे वॻे ताईं न बसि मुंहिंजो हाणे वञण जो टाइम थी वियो आहे
1: अलाह तव्हांखे ज़िंदगी वॾी ॾे छो था वञो
0: बसि पोइ हाणे वक़्तु वक़्त खां वक़्त ताईं जीअणो आहे हलणो आहे रहणो आहे रोज़ी रोटी एसी ताईं हुई
1: बिल्कुलु इहो ठीकु आहे वेंदे वेंदे को बरसाती कलाम थी वञे
0: हाज़िर हाज़िर हाज़िर हाज़िर साईं हाज़िर साईं नाला वठी वठो जल्दी जल्दी टाइम तमामु घटि आहे ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी सर महिरबानी जी जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई आहे जलाल चांडियू साहब जो आवाज़ त पुॼाणी ते पहुची वियो आहे ऐं हाणे आवाज़ आहे कहिड़ी लॻी थी कस जानी मूंखे ॾस ऐं इहो आवाज़ अमीर सुञाणंदा हूंदो यकीन छाकाणि जो जग मशहूर आवाज़ आहे फ़ाइज़ा अली जो आवाज़ आख़िरी ट्रैक हूंदो जेकी शो में ऐं ॾिसंदासीं त असां गॾु कॉल ते आख़िरी लमात में केरु गॾु जी जनाब हलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई आहे शायदि सो कॉल ड्रॉप थी वई त पोइ पाण छा कंदासीं हिकिड़ो दफ़ो कॉल खे अटेंड करण जी कोशिशि कयूं था हलो अस्सलाम वालेकुम साईं केरु साहिब किथां खां अयाज़ अली भुट्टो साहिब खे भली कार चवंदासीं लाड़काणे जे थधियुनि ऐं सुठियुनि हवाउनि मां असांखे यादि कयो अयाज़ अली भुट्टो साहिब तव्हां सां गॾु केरु अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे जी जी
1: भुट्टो
0: जी जी
1: हफ़ीज़ भुट्टो
0: जी जी
1: भुट्टो
0: जी जी
1: ॿ दोस्त लाड़काणे में
0: जी जी
1: अब्दुल गनी अबड़ो हलीम अबड़ो
0: जी जी
1: मजीद शर
0: किरोड़े कुर्ब साईं सभिनी दोस्तनि जूं महिरबानी अव्हां जूं स्पेशल महिरबानी थैंक यू हाणे असां कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो वालेकुम अस्सलाम केरु साहिब किथां खां जी जी शुक्र अलहमदुल्ला अव्हां जी दुआ लॻी पए तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी जी

0: अरबाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बन
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: सिंध असेंबली अपोजिशन के गोड़ दौरान मकानी कानून में तरमीम लाए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2026 अक्सर राय से मंजूर कर वरतो। बिल में सुलह वारे फोरम जो इजाफो 90 दिन अंदर फोरम कायम करण लाजमी होंद। सुलह वारो फोरम अवामी मसलन के हल लाए पुलिस से राबतो कर सकंदो। मकानी इदारा इलेक्शन कमीशन के मुद्दों मुकम्मल थियण का 120 दिन अग चूंडू कराने लाए खत लिखंदा। बिल की मंजूरी दौरान मुखालिफ दुर पार्टियों जो सख्त एहतजाज स्पीकर के डाइस अगया नारेबाजी बाद एजेंडा जो कापियो फाड़े छ्यू ऐवान में भी वाकआउट।

मुखालिफ़ धुर मकानी कानून में तरमीम पर बिल खे रद्द करे छॾियो। अदालत वञण जो ऐलान। अपोजिशन लीडर अली कुर्शीदी चयो आहे त सियासी आमलियत हली रही आहे। असेंबली सेशन में बिज़नेस खे हिक तरफ़ करे हिक तरफ़ो बिल मंज़ूर कयो वियो। सिंध हुकूमत इहो बिल मंज़ूर करे अदालती फ़ैसिले जी बि तोहीन कई। जमात इस्लामी जे मेंबर मोहम्मद फारूक जो चवण हो त इहो बिल जमहूरियत दुश्मन आहे, जंहिं ख़िलाफ़ अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। लोकल बॉडी एक्ट में अख़्तियारी न आहिनि। इन तरमीम ज़रिए सियासी चूंडियल माण्हू चूंड न थी

जी सूरत में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बणजी वेंदा। पीटीआई मेंबर शबीर कुरैशी चयो त 2023 में हॉर्स ट्रेडिंग ज़रिए मुर्तज़ा वहाब खे मड़ियो वियो हो, वरी उहे ई माण्हू हूंदा त मकानी चूंडुनि में धांधलीअ जो ख़दशो यकीन में तब्दील थी वेंदो। हू इन बिल खे मुकमल तौर रद्द कनि था। सिंध हुकूमत ऐवान में एमक्यूएम जे रवैये खे गैर जमहूरी करार ॾेई छॾियो। सीनियर सूबे वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त हर निज़ाम में बहितरीअ जी गुंजाइश हूंदी आहे। एमक्यूएम अॼु बि पंहिंजी पुराणी रवायत बरक़रार रखी, कंहिं ॼाण हुई त अवाम में उन्हनि जी मक़बूलियत नाहे, तंहिं करे मकानी चूंडुनि खां भॼी विया हुआ। पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम सिंध खां सवाइ किथे बि नाहे। इलेक्शन कमीशन केतिरा ई भेरा चूंडुनि लाइ लिखियो, पर पंजाब हुकूमत हुकुम हवा में उॾाए छॾिया। सूबाई घरू वज़ीर दयाल अंजार जो चवणु हो त एमक्यूएम जो असेंबलीअ में रवैयो गैर जमहूरी हो। बिल ते एतराज़ हो त स्टैंडिंग कमेटीअ में मामलो उथारीन हा। सिंध हुकूमत चाहे थी त बलदियाती निज़ाम जो तसलसल बरक़रार रहे ऐं चूंडू वक़्त सिर थियनि। इजलास में एजेंडा पहिरियां ई तय हुई। एमक्यूएम मकानी बिल मंज़ूर थियण खां पहिरियां ज़रूर पढ़ियो हूंदो।

कंहिं बि सियासी जमायत वटि इस्लामाबाद जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार न आहे। सूबनि जा वॾा वज़ीर इहतजाजनि लाइ सरकारी मशीनरी जी इस्तेमाल न थियण खे यकीनी बणाइनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई जे लांग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत चयो त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे इहतजाज में शरीक थियण लाइ मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतूं इहतजाजनि लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल थियण न ॾिन। कंहिं सियासी जमात या अॻवान खे बि शहरनि जी चुरपुराॾो रंडक विझण जो अख़्तियार न आहे। इस्लामाबाद इंतिज़ामिया ऐं घरू वज़ारत चीफ सेक्रेटरी ऐं आई जीस खे हिदायतुनि ते अमल खे यकीनी बणाइण जी हिदायत करे छॾी। ब्याज जी शरह 11.5% ते बरकरार। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। स्टेट बैंक मूजिब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज जी शरह बरकरार रखण जो फ़ैसिलो कयो। ईंदड़ 3 महीननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरकरार रहंदी।

आबनाए हुरमत बाबत विच ओभर जी मुल्कन ऐं ईरान जो अॼोको रिथियल इजलास मुल्तवी। ओमान ऐं ईरान इजलास मुल्तवी करण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त सऊदी अरब जी दरख़्वास्त ते ओमान में अॼु रिथियल इजलास मुल्तवी थियो। सऊदी अरब जे तेल पाइप लाइन ते हमले में बि ईरान मुलविस नाहे। ईरान ऐं विच ओभर जे मुल्कनि में छिकताण जो फ़ाइदो रुगो इसराइल खे थियो आहे। यमन जंग सां को बि तालुक़ नाहे। कोहे किलिंग जबल में बि एटमी सरगर्मियुनि वारियूं ख़बरूं कूड़ियूं आहिनि।

गरीब ऐं पोर तबके खे महांगाई खां बचाइण लाइ वज़ीर आज़म पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कयो। कोशिश हूंदी त वध खां वध शहरनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ शहज़ा फातिमा ऐं अली परवेज़ मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पहिरीं मरहले में शहरनि खे NIC नंबर मोकिले रजिस्ट्रेशन करणी पवंदी। ॿिए मरहले में गाॾीअ जी रजिस्ट्रेशन थींदी। ॿ व्हीलर लाइ 20 लीटर ऐं नंढियुनि गाॾियुनि लाइ 30 लीटर ताईं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

मीर रज़ा जे नक जी हॾी भॻल ऐं मथे ते ज़ख़्म जा निशान हुआ। मीर रज़ा जा ज़ख़्म मौत खां पहिरीं जा हुआ। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया जो अदालती कमीशन वारो बयान। डॉक्टर सुमैया मूजिब गोली लॻण सबबि मीर रज़ा जो पासरा थियूं, फ्रेक्चर थियूं, फिफड़नि ऐं दिलि खे नुक़सान पहुतो। अदालती कमीशन में FIR जी दाख़िला ऐं केस जी जाच बाबति पुलिस ऑफिसर्स खां बि सख़्तु पुछाणो। मीर रज़ा जे वालिद मूजिबि पुलिस पहिरियां चयो 24 कलाकनि खां अॻु केस दाख़िल न थींदो। मंझंदि जो वियासीं त SHO रेस्ट रूम में हो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।